सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, समाचार होंगे बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया

0: गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मैं अपना दोष और अपराध कहाँ तक कहूँ, मेरी दया मई मैया मुझे अपने चरणों में ले ले।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: सत्य के समान कोई तप नहीं, सत्य के समान कोई जप नहीं। सत्य से सद्रूप प्राप्त होता है, सत्य से साधक निष्पाप होता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: बहते पानी पर चाहे जितनी लकीरें खींचो, एक भी लकीर नहीं खींचेगी। वैसे ही सत्व शुद्धि के बिना आत्मज्ञान की एक भी किरण प्रकट नहीं होगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: जिनकी जटाओं में गंगा का वास है, जो सब देवों के पिता हैं, उनके चरणों में शरण लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं।

0: ये थी हमारी आज की वंदना। वंदना आप सुन रहे थे दीपशिखा सिंह के साथ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: जीवन में कभी भी आपको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अगर नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता, मैं नहीं होता तो किसी का कोई कार्य नहीं होता, मैं नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। प्रायः हम इस अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं नहीं रहता, परिवार में भी चाहे संबंधों में भी, मैं नहीं होता तो तुम्हारा पता चलता क्या हो जाता। हनुमान जी महाराज का एक चरित्र है, जब जानकी जी का पता लगा करके हनुमान जी आए और राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा कि तुमने मेरे जीवन का वह कार्य कर दिया, इतने दिनों तक मैं दुखी रहा, जानकी का कोई पता नहीं था और तुमने पता लगा करके मेरा कार्य सिद्ध कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे अंदर वह गुण भी नहीं, मेरे अंदर वह बल भी नहीं है। पहली बात तो यह है, किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर अहंकार है तो पतन के लिए वह केवल मात्र अहंकार ही काफी है। हनुमान जी महाराज से प्रभु ने कहा, क्यों, अगर तुम कारण नहीं हो तो जानकी जी का और कोई पता क्यों नहीं लगाया? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं भी पता नहीं लगाया, जिस समय सारी सेनाएं जा रही थी तो आपने किसी को नहीं बुलाया और मुझे बुला करके अपनी मुद्रिका दी और मेरे सर पे हाथ फेरा कि जाओ, अगर जानकी तुम्हें मिले तो तुम इस मुद्रिका को दे देना। तो प्रभु उस मुद्रिका के सहारे मैं लंका पहुंच गया। तो अगर प्रभु मैं अपने बल पौरुष से पहुंचा होता तो मेरे मन में यह होता कि मैं नहीं होता तो क्या होता? प्रभु ने कहा, ठीक है, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम लंका को जला देना। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु धन्य है आप, लंका को मैंने जलाया। अगर लंका को मैंने जलाया होता, चाहे लंका को जलाने में मैंने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया होता तो मैं कहता कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन लंका को आपने रावण से जलवा दिया, रावण की लंका रावण से जलवा दी और सहायक आप बन गए। मैं कोई ऐसी वस्तुओं को लेकर के नहीं गया था जिससे मैं लंका को जलाने का प्लान लेकर के गया था कि मैं लंका को जलाऊंगा। मुझे हंसी आई कि त्रिजटा ने स्वप्न देखा है कि लंका जलकर के खाक हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे लंका को जलाऊंगा, उर प्रेरक रघुनाथ प्रेरणा देने वाले आप हो, मैं लंका को कैसे जलाऊंगा, और इसका स्वप्न भी सत्य है। लेकिन धन्य है प्रभु, अगर लंका को मैंने अपनी व्यवस्था से जलाया होता तो मेरे मन में एक अहंकार उठता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो उसके बाद राघवेंद्र सरकार ने कहा, अच्छा ठीक है, लंका भी तुम मेरे कारण जलवाए और यहाँ से मेरी मुद्रिका के सहारे पहुँच गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे आप मुझे पद प्रतिष्ठा चाहे मेरा सम्मान करिए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लंका पहुँच गए, लंका को जला दिया, तुम वापस आए, वापस आने में कौन सहायक मना? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप को मैंने पिता माना और पराम्बा जगदम्बा स्वरूपा जानकी जी को मैंने माँ माना। जब उनको लगा, मैं भी ये सोचता था कि लंका से अगर मैं वापस चला जाऊँगा अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने वेग से, तो मेरे मन में यह प्रश्न रहता, मेरे मन में हमेशा यह भाव रहता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो मैया ने अपना चूड़ामणि उतार के दे दिया, चूड़ामणि उतार तब लेहूँ हर समेत पवन सुत लेहूँ। उस चूड़ामणि को लेकर के मैं आपके पास चला आया। तो विचार करिए कि हर पग पग पर मुझे लगा कि आप मेरी सहायता कर रहे हो। तो जीवन में जब आपके साथ कुछ अच्छा चल रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो यह विचार करना चाहिए कि लोग आपके सहायक की भूमिका में हैं, इसलिए आपका अच्छा चल रहा है। इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है कि आप अहम में यह करो कि मैं नहीं होता तो क्या होता। जिन हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार जी के एक बार कहने पर लंका पहुंचे, जानकी जी का पता लगाए, लंका को जलाए, इतना बड़ा बड़ा कार्य करने के बाद भी हनुमान जी कहते, प्रभु अगर आपने वह सब नहीं किया तो मेरा सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने किया होता तो मैं का भाव है, मैं का जो एक अहम है वह मेरे मन के अंदर रहता। इसलिए जीवन में कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं होता तो क्या होता।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। पराजित वे होते हैं जो विनम्र

पर्यावरण प्रदूषण में वृक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अमूल्य योगदान दें। लोहा लोहे को अवश्य काटता है, परंतु कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए बता दें आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात 10 बजे सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। हिंदी वार्ता हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे, जिसमें आप प्रोफेसर गोविंद पांडे की वार्ता सुनेंगे। विषय है हम और हमारा पर्यावरण। रात 7:31 पर आज का संगीतकार कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए जाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कुछ गीत।

शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम देस हमार। इसमें राम कृपाल यादव की वार्ता होगी। लोकगीतों का कार्यक्रम शाम 6:45 पर। लोकधारा, आज की कलाकार हैं श्रीमती रागनी श्रीवास्तव। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा शाम 6:10 पर। खेती बाड़ी और बालवाड़ी का समय है 5:35।

दोपहर 1:50 पर खेती किसानी में आज आप सुनिएगा डॉक्टर प्रतिभा सिंह की वार्ता। विषय है उन्नत कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। आज का नारी जगत लेके आएंगी अनीता भट्ट। समय याद रखिएगा दोस्तों, 1:15।

दोपहर की सभा का सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 12:15 पर और गाने सुहाने का आनंद लीजिएगा 12:30 पर। बारह बजे सुनेंगे दोपहर में नाटक आंचल एक परचम। गीतांजलि का समय है 11:30 और लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज आप सुनिएगा श्रीमती मैनावती श्रीवास्तव के गाए कुछ लोकगीत। फिल्म संगीत 10:05 पर कार्यक्रम है गाते गुनगुनाते।

सुबह 9:50 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा और देश गान 9:25 पर, हिट्स सुपर हिट्स 8:45 पर और कार्यक्रम पूर्वा सुहानी का समय होगा 7:31।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

रक्तदाता बनकर जीवन को बचाइए। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, वक्त हो चला है मानस गान का, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं, भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटक यान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः, विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः, भारत टैक्सी संबद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेत्रीन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्री शाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
4: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
3: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं

0: मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वीयोत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत

सिंह की गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने चार और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हम ये न सोचें कि देश ने हमको क्या दिया, बल्कि हम ये सोचें कि हमने देश को क्या दिया। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का। समाचार होंगे बस थोड़ी देर में।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

0: का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,00,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक करबला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की करबला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
3: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी

0: प्रिजन डॉक्यूमेंट, नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

0: तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये सुनते हैं आराधना फिल्म से ये गाना।
0: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

0: दोस्ती फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
4: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं।

0: सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
5: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
6: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो

0: का उससे वहां तक पहुंच गया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
2: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं गाइड फिल्म से ये गीत। संगीत एस डी बर्मन का है, शब्द शैलेंद्र के हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के

0: कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं महल फिल्म का ये गाना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, शब्द आनंद बख्शी के हैं।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: कन्याकुमारी तक भारत एक आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: I want to take it across to new horizons.

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से ये गाना। संगीत आडी बर्मन का है, शब्द आनंद बख्शी के।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम लखनऊ से।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ

0: से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहां पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेष कर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
1: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे, और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
0: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सब के लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को सहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
2: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से ख़त्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फ़ोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकालें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
3: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट, रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग

0: सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है, उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2,00,000 बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानु चंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
1: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जनकल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
2: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले 1 वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
3: ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनाज पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: आकाशवाणी का ये गोरख

0: गोरखपुर केंद्र है देश का इस अंतराल के बाद।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम लखनऊ से।
1: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम खलूस कबूल कीजिए। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम और हराम के पाक महीने से होती है। मुहर्रम हुर्मत वाला महीना चार पाक महीनों में से एक है।

0: मुहर्रम के महीने में बहुत ही वाकयात पेश आए हैं। इस महीने की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। और इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। इसी तारीख को क़यामत क़ायम होगी। मुहर्रमुल हराम के इस पाक महीने में हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं ये अपने आर्काइव्स में मौजूद फ़ीचर, क़ुरबानी जो तारीख़ बन गई। तहरीर शहज़ादा गुलरेज़ की है।
1: शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। عظیم قربانی کی یادگار ہے جس کی مثال تاریخ کائنات میں کہیں نہیں۔ ایک طرف انتہائی ظلم، بربریت، حیوانیت اور شیطانیت ہے، اور دوسری طرف انتہائی مظلومی، صبر، ایثار اور مجسم انسانیت ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا جاتا ہے، کم تر ہوتا جاتا ہے، لیکن غم حسین وہ غم ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے اور حشر تک عزاداری شہیدان کربلا برقرار رہے گی۔

दिया कि आज गोद के बच्चों ने दूध छोड़ दिया।

0: फैला हुआ बुझती हुई शमरों का धुआं है, आता हुआ हर लम्हा एक अंदेशे जां है, अनफास पे चलती हुई तेगों का गुमा है, सीनों में मगर जश्न चरावां का समा है, होठों पे मुनाजात है, आंखों में सहर है, तारीकी ये इमरोज में फरदा पे नजर है।
1: आवाज की एक शम्मा है परवाने 72, उन्वान है एक और है अफसाने 72, है दिल की कशीद और है पैमाने 72, लैलाए शहादत के हैं दीवाने 72। थे गम की मदारात में मसरूफ खुशतवार, बेदार थे इंसान की किस्मत के निगहदार, जागी हुई आंखों में भी थे सुबह के आसार, 18 जवां हाशमियों मुत्तलबी थे, सब सिलसिला दाराने रसूले अरबी थे। रुखसत हुआ एक एक रफी के शहे अबरार, बढ़ बढ़ के गले मौत से मिलते रहे अंसार, मैदान में गए शह के अजीजान तरहदार, ता अस्र मिला खाक में हंसता हुआ गुलजार। कासिम है न अब्बास न अकबर से हसी है, हद ये है कि गहवारे में असगर भी नहीं है।
2: तन्हा सिपहे जुल्म में है सैयद जीशां, घर लुट गया आबाद हुआ गंजे शहीदां, अतफाल हैं सहमे हुए हैं बीबियां गिरियां, जुज आबिदे बीमार नहीं कोई निगहबा, लाशें हैं शहीदों की गमे बेकफनी है, शब्बीर हैं और दर्द गरीबुल वतनी है।
1: बेटे हैं न भाई न भतीजे न मददगार, लश्कर है न है लश्करियां और न अलमदार, गम भूख आतश है यही अब शाह के अंसार, ले दे के है तन्हाई का एहसास ही गमख्वार, गम कितने अकेला दिले सदफाश उठाए, हर याद चली आती है एक लाश उठाए।
3: इन आंधियों के थपेड़ों में सर उठाए हुए खड़ा है सिपते पयंबर चटान की सूरत, खिला हुआ है वो चेहरा गुलाब की मानिंद, खींचे हुए हैं वो आबरू कमान की सूरत।
0: छाई है घटा जुल्म की खुर्शैद शरफ पर, संग उड़ते हुए आते हैं ईमां के सदफ पर, नरगाह जफाओं का पयंबर के खलफ पर, तलवारें बरसती हैं दिले शाह नजफ पर, है एक हदफ और कमादार हजारों, एक मुसहफ़ रुख और खताकार हजारों, आई जो कमी मेरे हक आगाह की जौ में, गहना गए सूरज कई जुल्मात की रौ में, ईमान का घर जलने लगा जुल्म की लौ में, पामाल हुई लाश हुसैन इस तगो दौ में, खेमे से वहां ज़ैनब गिरियां निकल आई, घबरा के यहां शाम गरीबा निकल आई। कुतलल हुसैन बकर बला, कुतलल हुसैन बकर बला, जुबहल हुसैन बकर बला।

0: अभी आप ये आकाशवाणी रामपुर के आर्काइव में मौजूद फीचर समाप्त कर रहे थे, कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार थे सैयद हामिद मियाँ, रईस रामपुरी, जी आर सैयद, जुल्फ़िकार आदिल, शहजादा गुलरेज, अख्तर रिजवी और विनोद आनंद दयाल। तरतीबो पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: अपने बिजनेस को

0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत इस अंतराल के बाद।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय

0: गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिसॉर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
1: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
0: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से।

0: करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक एमबीए एमसीए बीबीए बीसीए बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। केआईपीएम गीरा गोरखपुर।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: मेहंदी हसन के गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। समाचार होंगे बस कुछ ही पलों में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबू वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबू वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं झुमरू फिल्म से ये गाना। संगीत किशोर कुमार का और शब्द रचना भी किशोर कुमार की है।
1: मैं हूँ झुम झुम झुम।

0: सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

अभी आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थी बात एक रात की, जंगली, तेरे घर के सामने, संगम। अब आइए सुनते हैं असली नकली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के हैं।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH service DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV channels और

0: रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म से ये गाना। संगीत आर डी बर्मन का है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं।

0: अरिजीत सिंह के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्य।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है कुछ संदेश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: यह भी एक ऐसा गीत सुना रही हूँ, जब दूल्हा शादी करने के लिए आता था माड़ू में, तो ससुराल पक्ष जो है अपने तरफ से अपना वस्त्र पहना करके दूल्हा को तब शादी का रस्म शुरू कराते थे।

0: श्रोताओ, यहाँ हम लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
3: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
2: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
3: UPSRTC देवरिया,
2: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
2: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
3: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
2: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मैनावती श्रीवास्तव के गाए कुछ लोकगीत।

0: हम अभी जो सुनाने जा रही हैं
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
6: लोकगीतों के कार्यक्रम में लोकरंग में आज आप सुन रहे थे मैनावती श्रीवास्तव के गाए कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का सबसे पहला गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ब्रदर्स फिल्म से। सोनू निगम और नीति मोहन की आवाज में संगीत है अजय अतुल का और इस गीत को लिखा है अमित भट्टाचार्य ने।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताओं, जावेद साहब ने क्या खूब लिखा है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी तो कभी धूप जिंदगी। जिंदगी के हर रंग को, हर जज्बात को अपनी आवाज से सजाने वाले एक ऐसे शख्सियत का नाम जिसने सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है। एक ऐसी आवाज जो हर धड़कन की जुबान बन जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस फनकार की जिसे दुनिया द मेलोडी किंग और मॉडर्न डे मोहम्मद रफ़ी के नाम से भी जानती है। जी हाँ, हमारे सबके प्यारे सोनू निगम।

0: कुर्बान फिल्म का आप ये गीत सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज़ में। साथ में श्रेया भी थी और सलीम मर्चेंट भी। इस गीत को गीत बनाया था, गीतकार थे इसके निरंजन यंगर।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
0: श्रोताओ, 30 जुलाई सन 1973 को फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम ने महज 4 साल की उम्र से गाना गाना शुरू कर दिया था। जब वो अपने पिताजी के साथ स्टेज पर गाते थे, तभी लोगों को समझ आ गया था कि ये लड़का एक दिन कुछ न कुछ तो कर दिखाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। 1990 में जब वो मुंबई आए, तो उनका सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट ने रंग दिखाया। फिल्म बॉर्डर का वो गाना याद है ना, संदेसी आते हैं। उस एक गाने ने पूरे देश को और पूरे देश के आँख में आंसू भर दिया और हर दिल में सोनू निगम के नाम को लिख दिया।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। अजू अत्तल का संगीत था, अजय अतुल का, और आवाज़ तो आप पहचानते ही हैं, सोनू निगम साहब का, और फिल्म थी अग्निपथ। दोस्तों, सोनू निगम की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? उनकी वर्सटैलिटी। अगर दिल टूटा है तो वो

हमें रुलाते हैं। अगर प्यार का इजहार करना हो तो वो हमें रोमांस जगाते हैं हमें। अगर जिंदगी को खुलकर जीना हो तो वो रास्ता दिखाते हैं। और अगर दिल में दर्द का दरिया हो तो वो रूह को छू लेते हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु समेत 14 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाकर हर भाषा के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: मौत की है ये दस्तक। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एम कोठियावानी राही का लिखा हुआ नाटक एक आंचल एक परचम।
1: जरीना, तू तो पहचान ले।
2: अरे जुलेखा, तुम? अरे अरे नकाब,
1: बेशर्म जो ठहरी।
2: अब भूल भी जाओ उस हादसे को जुलेखा, बता क्या हाल है?
1: ठीक ही हूँ। देख कब तक और भटकना पड़ता है।
2: कुछ पता चला?
1: किसका?
2: नादिर का।
1: खुदा जाने कहाँ है। साल पूरा होने को आया, शहर छोड़कर जाने कहाँ चला गया जालिम।
2: बेवफा।
1: ऐसा ना कहो सरीना, खुदा के लिए ऐसा मत कहो।
2: तुम बिना वजह उसके लिए जान देती हो। कमबख्त ने मेरी फूल सी सहेली को कांटा बना कर रख दिया, खुदा गार करे।
1: सरीना, होश की दवा करो, ये क्या कह रही हो तुम?
2: मुझे मिले तो बताऊं।
1: तुम चाहती क्या हो, मैं चली जाऊं?
2: नहीं नहीं जुलेखा, आओ बैठो, माफ करना। सही कहती हूँ, तुम्हें देखकर मेरा दिल खून होने लगता है। ये उदास हुस्न, सोगवार हाल, जुलेखा तुम सचमुच जुलेखा हो।
1: कुछ भी कह लो, नादिर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, एक लफ्ज भी।
2: मुझे माफ कर दे जुलेखा।
1: जाओ, माफ किया। जरीना जानती है, अब उसकी हिजर से लुत्फ अंदोज होने लगी हूँ। उसकी जुदाई मुझे प्यारी प्यारी ख्वाब दिखाने लगी है। घर वालों ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया। देखो

0: वैसे अच्छा ही किया। मैं नौकरी करती हूँ कॉलेज में।
1: मैंने तुमसे 100 बार कहा, अकेली न रहा करो, जमाना अच्छा नहीं। और फिर तुम्हारा मकान भी गैर महफूज जगह पर है। तुम्हारे नौशा भाई ने कई बार कहा, अपनी सहेली को यही बुला लो।
0: उनका शुक्रिया, मगर ये मुझसे नहीं होगा जरीना। मैं नादिर का इंतजार किया करती हूँ, मैं उसके लिए शमे रोशन किया करती हूँ, कहानियां लिखती हूँ। और इसलिए लिखती हूँ कि वो एक बड़ा कहानीकार है। मुझे अभी इस रूप में पाकर उसे कितनी खुशी होगी जरीना, कितनी खुशी होगी।
1: मुझे डर है मेरी जुलेखा कहीं खुद ही कहानी ना बन जाए।
0: मुझे खुशी होगी जरीना अगर मैं कहानी बन गई, नादिर की कहानी।
1: हाय अल्लाह, तुम तो रोने लगी।
0: सुन जरीना, मैं इस वक्त एक जरूरत से आई हूँ।
1: बोलो।
0: मेरे कॉलेज में कल एक फंक्शन है जहेज के खिलाफ। मैंने उस मौके पर बोलने वालियों में तुम्हारा नाम भी लिख लिया है, तुम्हें शिरकत करनी चाहिए।
1: अच्छा, तो अब जनाब नेतागिरी कर रही है।
0: नादिर से बिछड़ने के गम ने मुझे इस तरफ मायल कर दिया है जरीना। मेरे अंदर बला का जोश आ गया है। मैंने अपनी मजलूम बहनों के हक की बहाली के लिए खुद को वक्फ कर देने की कसम खाई है। शायद तुम्हें भी इसका एहसास हो जरीना। हमारी अनगिनत बहनें समाज का जुल्म सहते सहते अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। उन्हें अपनी पसंद की शादी का भी हक नहीं दिया जाता। मेरा दावा है जरीना, ना चाहते हुए अपनी पसंद के खिलाफ ऐलान करना पड़ता है। जहेज फराहम न होने की वजह से गरीब वालदैन अपनी जान से प्यारी बेटियों को निकम्मी बदमाश अय्याश जाहिल लड़कों के हवाले कर देती हैं या खुदकशी कर लेते हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो हक की आवाज उठाने के जुर्म में बेशर्म और बेहया कही जाने लगती हैं और उम्र भर ठोकरें खाती हैं।
1: अब खामोश हो जाओ, तुम्हारे चेहरे का रंग सुर्ख होता जा रहा है। तुम शोला बनती जा रही हो।
0: मैं चाहती हूँ कि तुम भी शोला बन जाओ। हमारी सभी बहनें मेरी और तुम्हारी तरह शोला बन जाएं सरीना, और समाज की बुराइयों को जलाकर खाक कर दें।
1: कोई और बात करो जुलेखा, कोई और बात करो। जज्बात पे बेकाबू हुई जा रही हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं।
0: मैं चाय जरूर पीऊंगी सरीना, मगर पहले तुम वादा करो, कल आओगी ना और वही बोलोगी ना जो मैं चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ आऊंगी, और जरूर आऊंगी, और बोलूंगी भी वही जो तुम चाहती हो, बल्कि उससे भी ज्यादा बोलूंगी। अब तुम टॉपिक बदलो, मैं चाय बना लाऊं।
0: अच्छा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी नई कहानी भी सुनाऊंगी।
1: शुक्रिया, जरूर सुनूंगी।
2: प्यारी बहनों, अभी आप कुमारी लीलावती को सुन रही थी। उन्होंने जहेज के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया, वो हमारे लिए सोने चांदी से कीमती हैं। मगर बात अमल की है। अब मैं अपनी कहानीकार बहन कुमारी जुलेखा फातिमा से गुजारिश करती हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें नवाजें।
3: मेरी हमजोलियों और बहनों, जहेज से बचने का जो तरीका लीलावती बहन ने बताया है, उससे मैं इत्तफाक करती हूँ। मगर सवाल ये उठता है कि जहेज देने वाले जब तक जहेज देते रहेंगे और जहेज मांगने वालों का मुंह भराई करते रहेंगे, तब तक ये लानत खत्म नहीं होगी। जरूरत है एक जोरदार तहरीक शुरू करने की जो जहेज लेने वालों के खिलाफ हो, और यही नहीं बल्कि देने वालों के खिलाफ भी। साफ जाहिर है ये मसला दौलतमंदों का मसला नहीं है, ये मसला साफ तौर पर अगर कहिए तो गरीबों का है, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। दौलत वालों के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए कि वो जहेज देना बंद करें। जहेज मांगने वालों का सोशल बायकॉट होना चाहिए। सिर्फ बड़े लोग इस पर अमल करें तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह लानत खत्म हो जाएगी। मुझे यह भी कहने दीजिए कि जहेज ज्यादातर वही लोग देते हैं जिनकी लड़कियों में कोई कमी होती है। जहेज की पेशकश करने वालों में

0: ज्यादातर, बल्कि यूं कहें कि मैं उनके बारे में ये साबित कर सकती हूँ कि या तो उनकी लड़कियां पुख्ता किरदार की मालिक नहीं होती या उनमें कोई खराबी होती है।
1: ये गलत है। मालूम होता है खुद आप में कोई ऐब है। ये मैं कह सकती हूँ कि आप आपने भरी महफिल में हाँ की जगह ना कर दिया था। आपके जहेज के बेशुमार कीमती सामान इकट्ठे किए गए थे।
2: खामोश खामोश, आप लोग जातियात की बातें ना करें।
3: बीबी, आपने दुरुस्त फरमाया, ये भी एक बड़ा मसला है, खास तौर पर शरीफ जादियों के लिए, जिन्हें अक्सर जबरदस्ती हाँ करना पड़ती है। जोर दिया जाता है कि इनकार ना करें, ना चाहते हुए भी अपनी नापसंदीदगी को पसंद में बदल दें। 50% मामलों में ऐसा ही होता है बहनों।
1: 50% पर्दानशीन लड़कियां इश्क नहीं करती, 1-8% ऐसा होता होगा।
3: मैं मानती हूँ, लेकिन 1-8% ही क्यों? मैं कहती हूँ कि ऐसा होने ही क्यों दिया जाए? क्या चंद लड़कियाँ बेजान होती हैं?
1: हाँ, आप रो रही हैं, आजू पहुँच लीजिए।
4: हाँ, पहुँच लीजिए।
5: माइक मुझे दो जुलेखा। बहनों, ये आपको क्या हो गया है? जुलेखा आपकी अपनी है, आप इन्हें रुस्वा करना चाहती हैं? मेहमान होते हुए भी मैं आपकी तरफ से इनसे माफी मांग रही हूँ और गुजारिश करती हूँ कि अपनी तकरीर जारी रखे।
3: मुझे माफ करो जरीना, मैं अपने ही बोल सकती।
5: मैं फिर मुआफी चाहती हूँ।
3: नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी।
5: फंक्शन खत्म होने दो, एक खुशखबरी सुनाऊंगी।
3: खुशखबरी अब मेरी किस्मत में नहीं जरीना।
2: जुलेखा साहिबा बाद में बोलेंगी, अब मैं जहमत देना चाहती हूँ नसीमा खातून साहिबा को। आप एक मकामी गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हैं। आइए नसीमा साहिबा,
5: आओ बाहर चले।
3: चलो,
5: मायूस होने की जरूरत नहीं, अब चलो मुस्कुराओ, शगुफ्ता हो जाओ, निखर जाओ।
3: अब क्या खाक रखा है मुझ में?
5: इस महीने का मुजस्मा देखा है?
3: नहीं तो क्या कोई खास कहानी आई है?
5: अरे जालिम, तुझे तेरी खोई हुई मंजिल मिल गई।
3: क्या मतलब सरीना?
5: ये ब्रीफकेस बहुत वजनी हो गया है प्यारी, मुंह मीठा कराओ तो खोल कर दिखाऊं।
3: क्या
5: मुजस्मा?
3: मुजस्मा दिखाओ।
5: बेहोश होकर गिर ना पड़ो कहीं। खैर, ये लो खोलती हूँ। अब देखो इस महीने का मुजस्मा। नहीं, अपना हाथ खींच लो, मैं दिखाती हूँ। देखो ये तस्वीर।
3: अरे अरे सरीना, ये तो नातिर है, मेरा नातिर। ताजा कहानी का उन्मान है नाम के साथ। अरे अरे वरक तो उलट दे जालिम। एक आंचल एक परचम, नातिर की नई कहानी। कहानी पढ़ने देना।
5: कहानी बात को पढ़ना, अपने सरताज का पता तो पढ़ पहले। फ्लैट नंबर 30, महानगर, लखनऊ, और एडिटर के नाम खत। नई जिंदगी के साथ नई कहानी, एक आंचल एक परचम लेकर हाजिर हो रहा हूँ। अब मेरी फिक्र बदल चुकी है, कद्र बदल चुकी है, अंदाज बदल चुका है, जख्म को मरहम बना लिया है मैंने। काश कोई अपने आंचल को परचम बना ले।
3: मारी खुशी की मैं बेहोश हुई जा रही हूँ जरीना, मुझे संभाल, मुझे संभाल सरीना, मुझे संभाल।
5: संभल जाओ बन्नो, और जज्बात पर काबू पाकर मुख्तसर सी ये कहानी पढ़ जाओ, खास तौर से आखिरी पैरा, और फिर चलो आखिरी तकरीर तुम्हारी हो जाए।
3: तुम ही सुनाओ ना सरीना, मैं होश में नहीं हूँ, तुम ही सुनाओ ना। सुनाओ सरीना सुनाओ।
5: अच्छा सुनाती हूँ। मगर हौसले पस्त हो गए, प्यार मर गया, जब उसने न चाहते हुए भी एक नामहरम को महरम बना लिया, एक बेगाने के नाम पर हाँ करके उम्र भर साथ देने का अहद तोड़ दिया, और तब उसे पता चला ये लड़कियाँ बुजदिल होती हैं, बेशर्म होती हैं, बेहया होती हैं। एक के बाद दूसरे के सामने बेलबास हो जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और तब मैंने तय कर लिया, जीऊँगा, कयामत तक जीऊँगा, मगर अपने लिए नहीं, उन नाकाम हसरतों के लिए जो मचलते हुए दिलों पे पलती हैं और बेसहारा होकर दम तोड़ देती हैं। मैं ऐसे ही दम तोड़ती हसरतों का सहारा बन

0: आंचलों को परचम बनाऊंगा जो नाजुक शानों पे लहराते लहराते हिजरे की आग में जल जाया करते हैं। मैं उन आतिशी पैकरों से कहूंगा, इंतकाम लो उन सौदागरों से जो तुम्हें मौत के हाथों बेच दिया करते हैं। सुन रही हो जुलेखा? सुन रही हो ना? क्या लिख गया जालिम? शायद उसे खबर नहीं कि तुम आज भी उसकी राह देख रही हो और उसको पाने के लिए जुल्म और नफरत की दीवार गिराने के लिए तुमने आंचल को पहले ही परचम बना लिया है। चलो चलो, जलसा खत्म होने वाला है। अब तुम भी कुछ बोल दो, कुछ बोल दो जुलेखा मेरी जान।
1: वो मुझसे बदगुमान हो चुका है जरीना।
0: पगली, एक कहानीकार होकर भी तुम दूसरे कहानीकार को नहीं समझ सकती? ये तो महज अफसाना है, और अफसाने की हकीकत भी क्या?
1: खैर, मैं मना लूंगी उसे, समझा लूंगी। अब मुझे इजाजत दो जरीना।
0: क्यों, तकरीर नहीं करोगी?
1: करूंगी, जरूर करूंगी, मगर अभी मुझसे कुछ नहीं होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
0: फिर कब?
1: लखनऊ से लौटने के बाद।
0: कब लौटोगी लखनऊ से?
1: अभी इसी ट्रेन से, अभी घंटा भर बाकी है ट्रेन छूटने में।
0: अरे अब कल जाना।
1: नहीं नहीं जरीना, एक मिनट भी मैं नहीं रुक सकती। सुनो, वो मेरा बुर्का उठा दो।
0: अब छोड़ ये बुर्का,
1: अब कहाँ छूटता है जरीना ये, अब कहाँ छूटता है ये। अच्छा, खुदा हाफिज़।

0: उन्हें बर्बाद ही करने को अगर सोचा था, और भी लोग थे दुनिया में, कोई मैं ही न था। तुमको सिक्के भी मिले होते एवज में इसके, किसी नवाब के फर्जंद को ढूंढा होता। करके बर्बाद ये सुनता हूं कि खुद भी हो तबाह, शाम तक गोशे वीरा में पड़ी रहती हो, शौके रफत में जो तोड़ा था दिले का हकशां, रात आती है तो जुल्मत में खड़ी रहती हो। खैर हो कि सुकून आए तो फिर रक्स में आओ, दस्ते बिस्मिल न सही, अब मेरी चाहत न सही, दस्ते कातिल ही सही, जाने वफा हाथ बढ़ाओ।
1: दरवाजा खोलो नादिर, दरवाजा खोलो।
2: कौन? जुलेखा नकाब में? क्या कहने, ये अचानक क्या लखनऊ में तुम कैसे? खैर आओ।
1: वही, बिल्कुल वही, वही मासूम फरिश्ता, देवता। नादिर, नादिर तुम बिल्कुल नहीं बदले नादिर।
2: हाँ बिल्कुल नहीं, मगर तुम तो बिल्कुल बदल गई, कोई और ही चीज नजर आ रही हो। हुस्न सुगवार, खूबसूरत पलकों पर आंसुओं के कतरे, औरत का बेशकीमती सरमाया, या खतरनाक तरीन हरबा। खूब, बहुत खूब।
1: ताने ना दो नादिर, ताने ना दो। देखो देखो मैं किस कदर थक गई हूँ, कितनी टूट गई हूँ अपने आप में। देखो देखो नादिर, दिल से दिल को राह होती है। तुम्हारा पता इस माह के मुजस्मे में देखा और चल पड़ी तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए नादिर, तुम्हारे लिए। तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते, मुझे प्यार क्यों नहीं करते, मुझे सीने से क्यों नहीं लगा लेते मुझे? तुम्हें क्या हो गया नादिर, तुम्हें क्या हो गया है?
2: होश में तो हो जुलेखा?
1: नहीं, बिल्कुल होश में नहीं हूँ जानू, मैं बिल्कुल बेहोश हूँ, इस घड़ी मुझे कुछ होश नहीं।
2: दूर हो जाओ, तुम्हारे बदन से गुनाहों की बू आती है।
1: कितनी लज्जत होती है गुनाह में नादिर, कितनी लज्जत होती है।
2: अब मुझे किसी लज्जत की जरूरत नहीं। अब तुम किस मुंह से आई हो मेरे पास, मुझसे मिलने?
1: कितनी प्यारी नज्म हो रही थी रेडियो पर, वो नज्म, दर्द भरी वो नज्म, ऐसा लगता है

0: जो चाहने पर भी दिल से दूर नहीं होती।
1: मेरे महबूब, मेरे अच्छे नादिर, तुम कितने ही भूले हो। देखो देखो, मैंने मैंने अपने आंचल को परचम बना लिया है। नादिर सुनो, सुनो नादिर, अब समाज की बागी हूँ। मेरी रगों में बगावत का खून दौड़ रहा है, उस बगावत का जो तुम्हारे तुम्हारे अफकार ने मुझे दिए, वो बगावत जिसका एहसास तुमने मुझ में पैदा किया नादिर, उस बगावत का जो फरसूदा माशरे को जला कर राख कर देगा नादिर। अब मेरी बगावत का हौसला और बढ़ेगा, अब इस बगावत के जाल की रानाइयां बेरंग फजाओं में हुस्न पैदा कर देगी नादिर, रंग भर देगी नादिर। आओ आओ, मुझे अपनी बाहों में समेट लो, अपनी तेज सांसों के करीब, दिल के करीब नादिर।
0: लखनऊ किसके साथ आना हुआ? मेरे पास क्यों आई हो तुम, और अब क्या चाहती हो मुझसे?
1: लगता है तुम किसी गलत फहमी के शिकार हो गए हो नादिर।
0: और तुम भी
1: मुझसे पूछो, तुम्हारे बगैर मेरे रात दिन कैसे बसर होते थे? मुझसे पूछो, मैं अब तक क्यों कर जिंदा रही? मेरा हाल क्यों नहीं पूछते नादिर, मेरा हाल क्यों नहीं पूछते? क्या हो गया है तुम्हें? अब वो जोश वो उमंग क्यों दिखाई नहीं देती? क्या हो गया तुम्हें? वो सब कुछ क्या हो गया जो मुझे देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी जो आती थी? जरूर तुम किसी गलत फहमी में मुबतला हो गए हो।
0: तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक मशरिकी तहजीब की परवरदा किसी और की हो चुकी हो, तुम पराई हो। तुम
1: क्या हो गया तुम्हें नादिर, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कहने लगे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें नादिर, क्या हो गया?
0: मैंने तुम्हारे यहाँ ट्यूशन किया, बरसों तुम्हें पढ़ाया, जुल्मतों से तुम्हें बाहर लाया, मोहब्बत की खूबसूरत दुनिया दी, अरमान दिए, उमंगे और तमन्नाएं दी, और तुमने मुझे क्या दिया? मैंने सोचा था हम दोनों मिलकर इस मक्कार दुनिया को बदल देंगे,
1: नादिर,
0: जुल्म और सितम की बस्ती को अमन व मोहब्बत का जहां बना देंगे, बेकस व मुफलिस लोगों के काम आएंगे, जहालत और कहाना रवायात के खिलाफ एक जबरदस्त तहरीर शुरू करेंगे। मगर तुम बदल गई, तुम्हें इतनी हिम्मत ना पैदा हो सकी कि तुम खुलकर मेरा नाम लेती, दुनिया को बता देती कि तुम मेरी हो। अगर उस भरी महफिल में जो तुम्हारे शादी के लिए जमी थी ये ऐलान कर देती तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेता?
1: मेरी बात सुनो नादिर, मेरी बात तो सुनो तुम, मेरी बात तो सुनो तुम।
2: खामोश रहो, खामोश।
0: मैं खूब जानता हूँ तुम दौलत की भूखी थी, तुम्हें एक मुफलिस कहानीकार से दौलत कहाँ मिलती? वो सुख चैन, वो आराम कहाँ मिलता? वो खुशी कहाँ मिलती जो एक ओबार स्मगलर की शरीके हयात बनकर तुम्हें मिल सकती थी?
1: तुम गलत समझे नादिर, तुम गलत समझे, तुम मेरी सुनो तो सही, मेरी सुनो तो सही।
0: और तुम सब कुछ पा गई, मगर जो मुझसे पानी वाली थी वो तुम्हें उस शख्स से नहीं मिला, और इसीलिए अपने घर से सैकड़ों मील दूर अकेली यहाँ भाग गई,
1: किसी बात
0: और दुनिया से छिपने के लिए नकाब उठ लिया।
1: नहीं, नहीं।
0: मगर जुलेखा, तुमने फूल की, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। अब मैंने भी जीने का अंदाज बदल दिया है, जीना सीख लिया है, मेरी कहानियों को एक नया मोड़ मिल गया है। अब मेरी कहानियां मुझे सब कुछ दे रही हैं, दौलत, इज्जत, शोहरत, यहाँ तक मोहब्बत भी।
1: खुदा के लिए मेरी कुछ सुनो नादिर, मेरे कुछ सुनो। मैं
0: अब मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगा, तुम मेरी मेहमान हो, और मुझे अफसोस है कि

0: अपनी मेहमान की खातिर नहीं कर सकता। हालांकि मेरा ये मकान तंग भी नहीं, बहुत बड़ा मकान है। ये कई कमरे हैं, कई साहिबान हैं इस खूबसूरत मकान में, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है मेरी शरीके हयात का कमरा।
1: शरीके हयात? क्या कह रहे नादे? क्या कह रहे तुम?
0: तो क्या मुझे कैस और फरहा समझ रखा था तुमने? यकीन नहीं आता।
2: किससे बातें हो रही हैं नादे डार्लिंग?
1: तो
0: हाँ, यही अमीरन डार्लिंग, इनको पहचाना?
2: नहीं तो।
0: यही है, यही वो है जिनके चलते मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा, जिनके चलते एक जबरदस्त हादसे से दोचार होना पड़ा, जिनके चलते तुम मुझे मिली, जिनके चलते मेरी कहानियों को एक नया मोड़ मिला, जिनके चलते।
2: ओ, आप हैं सुलेखा फातिमा, आप ही इनकी महबूबा रही हैं ना? आपकी शादी हुई है ना वो शख्स से जो?
0: अब रहने भी दो, दूर से चलकर आ रही है, मेहमान है, बेवकूफ है, फिर भी खातिर मदारत जरूरी है।
1: हाँ नादिर, ठीक कहते हो, दूर से चलकर आई हूँ, खातिर मदारा जरूरी है। ऐसा करो, एक घूंट शहर मिला दो, बस एक घूंट, एक घूंट तू ही पिला दो प्यारी, तू ही पिला दो, मेहरबानी होगी तू ही पिला दो।
2: आपकी महबूबा एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है।
0: इन्हें अब और शर्मिंदा ना करो।
1: जो चाहे कह लो, मैं पत्थर हूँ, पत्थर प्यारी। सुनिए, मेरे महबूब का ख्याल रखिएगा, ये बड़े मासूम है, बहुत मासूम है, बहुत ज्यादा।
2: संभालो बीबी,
1: आंचल न को परचम को इसी इनकलाबी के हौसले, थकते मरते नहीं जीते जी, इस परचम को झुकने नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
0: कहाँ चली?
1: कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब।
2: ठहरा होगा किसी होटल में इसका स्मगलर डार्लिंग, तुम क्यों फिक्र करते हो जी?
1: अच्छा नादिर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरे महबूब के महबूब, तुम्हें खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।

0: मुझे जाने दो जरीना,
1: बुखार तेज है जुलेखा।
0: तुमसे क्या मतलब?
1: डॉक्टर ने चलने को मना किया है।
0: डॉक्टर को बकने दो जरीना।
1: जुलेखा, जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी।
0: मुझ पर रहम करो जरीना, मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
1: वक्त बदलेगा प्यारी।
0: मुझे यकीन है।
1: फिर तुम मायूस क्यों हो?
0: मैं मायूस नहीं हूँ।
1: अकेली अकेली कहाँ भटकोगी?
0: कहीं भी, कहीं भी।
1: लो, वो नदी भी आ गई।
0: हाँ हाँ, ये जगह मुझे पसंद है जरीना। देखो शफक का रंग कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
1: हाँ बहुत अच्छा।
0: तुम्हारी हथेलियों का रंग भी ऐसा ही है ना?
1: तेरी हथेलियों में भी मेहंदी लगेगी जुलेखा।
0: मैं मेहंदी नहीं रचाऊंगी जरीना।
1: फिर मायूसी की बातें करने लगी।
0: ये मायूसी नहीं, मैंने तय कर लिया है, मैंने तय कर लिया है जरीना।
1: क्या तय कर लिया है?

0: तन्हा जीऊंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का।
0: ऐसी बातें न कर सालिम, ऐसी बातें न कर।
1: किसी के दो शेर याद आ गए, सुनो।
0: सुना।
1: शीशे के गुलदान महकना क्या जाने, आंगन की मासूम चमेली बातें कर, धूम मचा दे आज मेरे गलियारे में, छत पर चल बीमार सहेली बातें कर।
0: अच्छे शेर हैं दोनों, मगर अब तुम जाओ सरीना, मुझे अकेली छोड़ दो।
1: जिद न कर जुलेखा, अब वापस चलो।
0: कैसे कहूँ तुमसे, मुझे ये दुनिया बदसूरत लगती है सरीना, मुझे ये दुनिया बदसूरत लगती है।
1: कल अच्छी भी लगेगी।
0: सब कहने की बातें हैं पगली।
1: लखनऊ में जरूर कोई बात हुई है, तुम मुझे छुपा रही हो, कह डालो।
0: छोड़ो इस कहानी को, वो देखो अब शफक डूब रही है।
1: हाँ डूब रही है।
0: डूबती शफक का रंग, उसका मंजर नादिर को भी अच्छा लगता था।
1: और इसीलिए तुम्हें भी अच्छा लग रहा है।
0: हाँ इसीलिए।
1: नादिर को जिंदगी का नयापन भी अच्छा लगता था जुलेखा।
0: हाँ
1: तुम्हें भी जिंदगी का नयापन अच्छा लगना चाहिए।
0: हाँ
1: तो क्यों अच्छा नहीं लगता?
0: है कहाँ जिंदगी का नयापन सरीना, है कहाँ नयापन।
1: नहीं है तो पैदा करना चाहिए, क्यों नहीं?
0: ये क्या कह रही हो तुम?
1: भूला हुआ सबक याद दिला रही हूँ। तुमने लखनऊ से आकर मायूसी का लबादा ओढ़ लिया है, इस लबादे को उतार फेंको। तुमने सोचा था इस जिंदगी को बदल दोगी, अपने आंचल को परचम बनाकर आगे बढ़ोगी। अपनी मजबूर बहनों, खून के आंसू बहाने वाली बहनों, जीते जी मर जाने वाली बहनों, भरी जवानी में जहर का घूंट पीने वाली बहनों, चढ़ते दरियाओं में छलांग लगाने वाली, अपने कपड़ों में आग लगाकर जान देने वाली बहनों के काम आओगी। उनकी याद को आस में बदलोगी, उनकी मासूम जिंदगियों को कुचलने वालों के सर कुचल दोगी। ये माहौल, ये समाज बदल कर दम लोगी। मगर अचानक जाने तुम्हें क्या हो गया, तुम खुद वही बन गई हो जो हमारी लाखों करोड़ों बहनें बन गई है। खुदा के लिए अपने हौसले को आवाज दो, अपनी उमंगों, अपने इरादों को पुकारो जो एक एक करके तुम्हारा साथ छोड़ गई है। न जाने किस जालिम ने एक भड़कते हुए शोले को, एक तड़पते हुए तूफान को सुला दिया। खुदा के लिए फिर उठो, फिर अपने शोलों, अपने तूफान को आवाज दो। वो तुम्हारी सताओं के मुंतजिर है जुलेखा, मुंतजिर है।
0: जरीना, जरीना मेरी अच्छी जरीना, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें कयामत तक बाकी रखे। तुमने फिर मुझे जिंदगी दे दी, नई जिंदगी। फिर मेरे हौसलों को जगा दिया, मेरी हिम्मत एक नई तवानाई के साथ फिर से जाग पड़ी है जरीना। वो देखो, वो आसमान पर।
1: हाँ देख रही हूँ,
0: शफक का रंग फिर से निखर गया है,
1: खून की तरह सुर्ख रंग।
0: अब आओ सरीना, तुम भी अपने आंचल को रंग लो इसी रंग में,
1: और परचम बनाकर हम दोनों ही निकल पड़े जुलेखा, एक नई सिंध, एक नई दुनिया की तरफ।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक एक आंचल एक परचम, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से

0: करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
3: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
2: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
3: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

जानिसार अख्तर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से। अब सुनिए पेइंग गेस्ट का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। एसडी बर्मन का संगीत है और गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी।

0: नहीं है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Nothing should be given to you on a platter. If things are given to you on a platter, तो आपकी क्या contribution है? कुछ भी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर को देख लो किसी भी फील्ड में,

फिल्म 9211 का गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। एस डी बर्मन का संगीत है, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

बेहद खूबसूरत इमोशन से सजा हुआ गीत आप सुन रहे हैं काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। संगीतकार है अजी बर्मन और गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे SD बर्मन और गीतकार थे मशरू सुल्तानपुरी। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 kHz और FM 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
6: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
6: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
5: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
6: UPSRTC देवरिया,
5: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
6: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
5: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
6: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
6: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
5: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
0: सुगम संगीत में सबसे पहले सुनिए मेहंदी अली खां का

0: श्रोताओं, हम यहाँ लेते हैं छोटा सा अंतराल, बस हम यू गए और यू आए।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
4: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
3: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ।
4: हर गली हर मोहल्ला

0: वो साफ स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
0: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इकतसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियां बनाई जानी चाहिए।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन

0: की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। यह तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकाम को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सबसे पहले सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में इंदिवर का लिखा हुआ और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, फिल्म है जुर्म।

लीजिए सुनिए बाजीगर फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत। बोल है नवाब आरजू के और संगीतकार अनु मलिक।

अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

आइए अब सुनते हैं सलामी फिल्म से आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में अगला गीत। मदन पाल ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई

0: @gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
5: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
4: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
5: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
6: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में किसान भाई आज सुनिए भेंट वार्ता, विषय है उन्नत कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह।
7: मानव सभ्यता के उषा काल से ही कृषि कार्य किया जाता रहा है। समय के साथ इसके तौर तरीके और विधियां परिवर्तित होती रही हैं। नए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों के कारण कृषि क्षेत्र में अपूर्व क्रांति आई है। कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन के साथ साथ कृषि फसलों में मात्रात्मक गुणात्मक वृद्धि संभावनाओं के नए द्वार खोल रही है। कृषि क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने वाली जैव प्रौद्योगिकी हरित जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जा रहा है। अन्य क्षेत्र के लिए अलग रंगों से अलग अलग जैव प्रौद्योगिकी का नामांकन किया गया जा चुका है। जहां तक हरित जैविक प्रौद्योगिकी का प्रश्न है तो इसमें भी विशिष्टीकरण बढ़ता ही जा रहा है। फसलों फलों और फूलों में उनके परंपरागत गुणधर्म एवं अवांछित विशेषताओं का न्यूनीकरण विलोपन अथवा वर्धन सब कुछ जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से संभव हो पा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी की विशिष्ट एवं जटिल तकनीकों ने कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास एवं उन्नयन के नवीन आयामों का सृजन किया है। इसकी सहायता से रंग रूप गंध स्वाद जैसे गुण अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। फसलों के गुण धर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादकता में वृद्धि करने वाले जीन को आवश्यक सीमा तक सक्रिय किया जा सकता है, जिससे खाद्य असुरक्षा को कम किया जा सकता है। विटामिन ए से भरपूर सुनहरे चावल की प्रजाति जैव प्रौद्योगिकी का अनुपम वरदान है, जो इसकी आपूर्ति का सहज सुलभ माध्यम बनता जा रहा है। टमाटर की अनुवांशिक रूप से उन्नत प्रजाति जैव प्रौद्योगिकी की देन है। इसी का सहारा लेकर कपास बैगन सोयाबीन मक्का तिलहन जैसी फसलों के बीजों ने अधिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन एक चुनौती के रूप में सामने आता है, तो अधिक वर्षा तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फलों उत्पादन विकट समस्या होती है। इन दोनों परिस्थितियों से निपटने वाले बीज का विकास और उसकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकें कारगर होती हैं। इसके सहारे बीजों में ऐसी प्रजाति विकसित होती है जो बाढ़ एवं सूखा जैसी परिस्थितियों से

निपट सकने में सक्षम होती है तथा अच्छा उत्पादन देती है। फसल उत्पादन को सुरक्षित करने की दृष्टि से जो कई उपाय प्रचलन में हैं, उनमें शाकनाशी तथा कीटनाशी रसायन का उपयोग प्रमुख है। बुआई से लेकर कटाई के अंत तक समूचा कृषि क्षेत्र इस चिंता का शिकार होता है। इन रसायनों के उपयोग से फसल सुरक्षा तो हो जाती है, परंतु इसके जहरीले प्रभाव का आकलन अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये रसायन फसलों पर भी कठोर हो सकते हैं। जब जैव प्रौद्योगिकी के तहत अनुवांशिक रूप से डिजाइन की गई दवाएं फसलों पर प्रयुक्त की जाती हैं, तो उनका कोई विपरीत प्रभाव न तो फसलों पर होता है और न ही मानव स्वास्थ्य पर। पौधे भूमि से विभिन्न विषैले पदार्थों को भी अवशोषित करते रहते हैं, जिसका कुप्रभाव पड़ता ही है। जब अम्लीय वर्षा या जहरीले रसायनों के संपर्क में पौधे आते हैं, तो यह जोखिम बहुत बढ़ जाता है। कुछ मामलों में फसलें स्वयं भी विषैले पदार्थ का उत्पादन करती हैं, परंतु इन सभी समस्याओं से जैव प्रौद्योगिकी छुटकारा दिलाती है और तब पौधे के स्वयं के गुण विषहरण द्वारा बिना किसी समस्या के उत्पादन में योगदान करते हैं। अनुवांशिक रूप से परिशोधित फसलें कटाई के उपरांत न्यूनतम हानि को सुनिश्चित करती हैं, पोषणीयता की दृष्टि से उत्तम होती हैं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ऐसी फसलें उत्पादन कुशल तो होती ही हैं, साथ ही कम खनिज एवं उर्वरकों का उपयोग करके अधिक उत्पादन देती हैं। कीटरोधी रोगरोधी होने के कारण कीटनाशी रसायनों पर इन फसलों की निर्भरता नहीं होती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। वर्तमान समय में विषाणुरोधी प्रतिरोधी तरबूज पपीता आलू टमाटर और मीठी मिर्च पर प्रयोग का क्रम चल रहा है। कीट प्रतिरोधी चावल सोयाबीन टमाटर और रोग रोधी आलू पर परीक्षण किया जा रहा है। कृषि भूमि पर यत्र तत्र प्लास्टिक के बिखरे होने का प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ता है। शहरी क्षेत्रों के आसपास यह समस्या अधिक पाई जा रही है, जिससे मृदा की संरचना भी बिगड़ रही है। ऐसे में जैव अपघट्य प्लास्टिक का विकास इस समस्या को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। उसके उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल मकई आलू तथा केले से प्राप्त होता है, जिनकी मांग बढ़ने पर दो तरफा लाभ होगा। परंपरागत रूप से दिए जाने वाले उर्वरक मिट्टी में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, मिट्टी की संरचना को विकृत करते हैं और जैव विविधता को कम करते हैं। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम अथवा शून्य करने के लिए सिलिकॉन के उपयोग की बात जैव प्रौद्योगिकी के बल पर की जा रही है। सिलिकॉन के सूक्ष्म स्वरूप को नैनो सिलिकॉन कहा जाता है, जो परंपरागत सिलिकॉन की तुलना में अधिक विशिष्ट प्रतिक्रिया करने वाला और जैविक रूप से अधिक सक्रिय है। यह जैविक तथा अजैविक बढ़वार को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले तनाव को कम करने में सहायक होता है। इसके उपयोग से फसलों की बढ़वार पर सकारात्मक असर पड़ता है। आज चाय एवं कॉफी लोगों के जीवन में आवश्यक रूप से सम्मिलित लोकप्रिय पेय है, परंतु इसके अधिक उपयोग के कुप्रभाव यदा कदा चर्चा का विषय बन जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकें इनके हानिकारक प्रभावों को शमन करके उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं। तंबाकू के निकोटीन को निष्प्रभावी करने से संबंधित अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हो पाया है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 17 मिलियन किसान जैव प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और

0: तत्शील कृषि में इसकी भूमिका को सिद्ध कर रहे हैं। कम क्षेत्रफल, कम लागत, कम श्रम और अधिक उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, दीर्घकालीन भंडारण क्षमता जैसे कई क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी की कृषि में उन्नत उपयोगिता को और भी बढ़ाने में सक्षम होंगे।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे वार्ता। विशेषज्ञ थी डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज का विषय था उन्नत कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a three-day state visit. Described Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे।

0: समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता

0: परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250

0: समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। अब ये सभा यही समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपनी सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973
3: में
2: हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था। हाँ। दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई।
2: अच्छा।
3: थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए। हाँ। थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
2: अच्छा।
3: मैंने कहा भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो।
2: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे।
2: अच्छा।
3: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
2: कोई पैसा नहीं देते थे?
3: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
2: अच्छा, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे?
3: यही काम करते,
2: संघर्ष जो
3: करता। अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
2: हाँ।
3: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
2: अच्छा।
3: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
2: इतना
3: नहीं था।
2: पैसा मिल जाता था,
3: इतना पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
2: अच्छा।
3: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया।
2: जी, सपने देखने जैसा।
3: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
2: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
3: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
2: बताइए।
3: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आए।

0: माता पिता से बात होती रही क्या, उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत
1: परेशानी
0: नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच
1: दो
0: ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे,
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
0: गुम,
1: क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश हो
0: भी
1: जाए।
0: ऊर्जा आ जाती थी,
1: हाँ लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा,
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन
1: नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता
0: प्रति,
1: है,
0: ना इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे, क्योंकि
0: जी।
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास

0: आना शुरू किया।
1: हम्म,
0: और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे, बातचीत में वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप,
0: कहीं मुझे एक रहता है,
1: हम्म,
0: और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा
0: उनके जैसा हो सकता है,
1: जी,
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: हम्म, ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
0: जी
1: आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
0: जी जी
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है
0: जी
1: ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का, मैं समझता हूँ,

0: हो चुका था
1: फिल्मों की।
0: फिल्मों की, लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो
1: हाँ।
0: लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे पास उस वक्त टू व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा, और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले
1: तो
0: मुझे।
1: हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था,
0: नहीं,
1: वो कोई
0: वो
1: और
0: कोई और था।
1: था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी जी
1: तो। तो
0: जी
1: बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
0: जी जी
1: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना
0: देखिए,
1: आसान तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए,
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए। और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई,
1: अच्छा
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा
0: वो कहते थे, ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था, मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था, और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा, बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा, जी वो क्या होता है? बोले, कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और
0: उनका
1: लेजेंड से थे वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना है
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े?
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सब मैंने वहीं से सीखा।
0: वाला थे किशोर
1: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी।
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी।
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूं, मैं कल भी आपको मालिक

0: समझता था, आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज़ का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा,
1: अरे क्या बात
0: और
1: है
0: उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान
0: जी जी
1: संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को,
0: जी
1: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
0: नहीं,
1: था?
0: मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा गीत?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: क्या बात है
0: की।
1: ये गीत तो हर एक के दिलो
0: जी
1: दिमाग में है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
0: इस
1: जाते
0: गीत
1: हैं।
0: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
1: अच्छा।
0: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब, जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया,
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली, लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है? मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या?
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी,
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया? हाँ।
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: पहली
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ।
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला, और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
1: क्योंकि तुम वो
0: हटके, तो
1: हटके।
0: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ,
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा,
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए, और हमें लगा कि अब हमारी

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर
0: है।
1: इसमें,
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी,
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब, अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं।

0: अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे, तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या। हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। ये
1: बहुत
0: ओढ़ली पैंतरा
1: खूब, बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हर एक को समझना आसान नहीं था।
0: जी जी
1: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस
0: जी
1: गीत
0: जी
1: में गवाया,
0: जी
1: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई, और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
0: ये
1: कहानी होती है।
0: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू के
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा।
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला
0: गया
1: जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूं ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है,
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं, थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार मैं बहुत परेशान हूं, तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो, मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं,
1: अच्छा
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी अदरवाइज वो नहीं मिलेगी, हाँ तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकते,
1: खा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो,
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे

0: ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो
0: दादा
1: लाइन के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है।
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया ऐसा कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मैं जब दूसरा

0: गाना हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
1: हाँ
0: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।
1: जी
0: भले बाद में उसको पता
1: जी
0: लगे कि ये मेरी
1: सच्चाई
0: बहन की
1: यही है।
0: सच्चाई है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा।
0: रिएक्शन आएगा। तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
1: हाँ अच्छा
0: और ये
1: जी
0: गाना कंप्लीट
1: जी
0: हुआ,
1: जी जी
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
1: जी
0: हुए।
1: जी

0: खटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए,
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको

0: फुलफिल कर देता हूं।
1: जी ये सबसे बड़ी
0: अपनी
1: बात है।
0: बात को रखते हुए
1: जी
0: मैं ऐसा
1: जी
0: नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी और
1: अच्छा
0: दादी गाएगी भी।
1: अच्छा
0: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
1: हाँ
0: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही बात
0: मुझे
1: है।
0: एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि
1: बिल्कुल
0: मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा। उसमें अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं,
1: हाँ
0: और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
1: जी
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब लड़का क्या जवाब दे, दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
1: जी
0: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूं।
1: जी।
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी, चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अब होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहा, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देश कान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश कान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट मैसेज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जो आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
1: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
2: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है। वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेन्यूल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पे डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर

0: कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: Yes.
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया ये बताएंगे सैनी जी आप।
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा हमारे पास आके प्रोसेस होकर 20-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए में मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए,
0: यस
1: ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग माफ करेंगे बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहा है, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे तो उनके साथ कोई भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे।
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो 1 ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी जरूर।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता

0: दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करता हूं, एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया। और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना। आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है,
0: नहीं
1: क्या है?
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ा, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए। जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी, अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं।
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्माकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं। और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती है प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती है। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण, वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: असर
0: कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी बढ़ा। ये एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको। ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चलकर।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल। तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज। तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब?
0: इसका
1: में
0: जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूँ कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था। ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है? तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है, हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा। तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की, वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गए, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि

0: रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रतिमाह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री है, हाँ। उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहे, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें, ये
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर कितना कंप्रेस हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहे, कंपास देना चाहे, इस तरह के चीजों पे भी।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचरे को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और कुछ ब्रांड को कुरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों को मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी, इसकी
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोचन को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब होगा देश कान इस अंतराल के बाद।
4: की बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
9: BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D5

0: फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
1: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
0: विजिट KIPM गीता गोरखपुर।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
0: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
0: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
1: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
0: UPSRTC देवरिया,
1: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
1: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
0: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
1: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बालवाड़ी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
2: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
4: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
4: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
3: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
4: UPSRTC देवरिया,
3: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
4: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
3: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
4: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
3: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
5: लइका लोगन जय हिंद। देखा भैया, जब भी कोनो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस आवेला तो ओकर एक उद्देश्य होला, यही के बहाने एक संदेश जाला कि आज कौन दिवस हवे और वही के प्रति लोगन के जागरूकता बनल रहेला। आज उ लइका लोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस हवे। ई हर साल 27 जून के मनावल जाला, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, MSME के रूप में भी एक कहल जाला। एकर मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था सतत विकास और रोजगार सृजन में छोटे व्यवसायन के महत्वपूर्ण योगदान और ओके पहचान दियावल है और उनके प्रोत्साहित कैल हवे। एकर पूरा नाम जोन बा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हवे। ई भारत जैसन देश के आर्थिक ऋण हवे। ई उद्योग हवे जौन की भारत के ऋण तहिए हवे, साथ साथ एमें कम पूंजी और कम कर्मचारी के साथे साथे ई संचालित होला और लेकिन बड़ी संख्या में ई लोगन के रोजगार भी उपलब्ध करावेला। विश्व स्तर पर छोटे उद्योगन के महत्व के देखत संयुक्त राष्ट्र महासभा अप्रैल 2017 में एक प्रस्ताव पारित कैलस। एक 27 जून 2017 के पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से ही मनावल जाला। भारतीय उद्योग में क्षमता और निवेश के आधार पे 3 श्रेणियन में एक बाँटल गई बा। सूक्ष्म उद्योग में निवेश 1 करोड़ से लेके एकर कारोबार 5 करोड़ तक होला। लघु उद्यम में निवेश 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक होला और मध्यम उद्यम में 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ मतलब 2.5 अरब तक के होला। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उद्योग ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ावा देला और शहर की ओर जौन अपने युवा लोग पलायन करते हुए ओके रोकले में काफ़ी हद तक भूमिका निभावेला। लइका लोग इतर रहल जानकारी और हम चाहती लइका लोग अगोरत होइन, प्रतीक्षा करत होइन सुने तो बाल गीत, फिर अपन बैठकी आगे बढ़ी।

0: नैहरे करा।
1: इकड़ तुकड़ भंबे भो, अस्सी नब्बे पूरा सौ, सौ गलोटा तीतर मोटा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हाँ, लड़का लोग देखा बाल गीत भी सुन ले, संदेश भी सुन ले, और लड़का लोगों के कुछ जानकारी भी दिया हो जा, जैसे अपन धरती पर जोने पे भैया पूरी दुनिया बसल बा, इहू के विषय में भैया जानकारी होए चाहिए लड़का लोगों के। डॉक्टर सुनीता पाटर ये विषय पे जानकारी देते हैं हमारी पृथ्वी, लड़का लोग सुने।
4: बच्चों, आज हम पृथ्वी के बारे में बातें करेंगे। पृथ्वी कहाँ स्थित है, उसका आकार कैसा है, उसके कितने भाग पर जल और कितने भाग पर स्थल पाया जाता है, दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। आपको पता है हमें प्रतिदिन जिस सूर्य, चंद्रमा और तारों को आकाश में देखते हैं, हमारी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा घर है, वो भी उसी आकाश में स्थित है। सूर्य जिससे हमें प्रकाश और गर्मी प्राप्त होती है, वो एक तारा है जो हमसे सबसे निकट का तारा है और पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। सूर्य हमसे औसत रूप से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आकाश में दूर टिमटिमाते तारे जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, वास्तव में सूर्य से भी लाखों गुना बड़े हैं। उनमें भी सूर्य की तरह अपना प्रकाश होता है। पहले के लोगों का ये मानना था कि सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर रहती है, परंतु हमारे देश में आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही ये सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी हैं। आपको पता है कि ग्रहों की कितनी संख्या है? हमारी पृथ्वी को लेकर कुल 9 ग्रह पाए जाते हैं और कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है आपको मालूम है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। सूर्य इनके मध्य में स्थित है और इस परिवार का मुखिया है। सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ उचित मात्रा में जल और वायु मिलते हैं, जिससे जीवन संभव है। जल और वायु के कारण ही यहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम सब जीवित पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि सभी ग्रहों और उपग्रहों का आकार गोल है। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है, परंतु इसका ऊपर तथा नीचे का हिस्सा थोड़ा चपटा है, इसलिए इसकी आकृति को लगभग गुलाब या इंग्लिश में इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका घनत्व 5.24 है। पृथ्वी के गोलाकार होने के अनेक प्रमाण भी हैं। यदि पृथ्वी चपटी होती तो सूर्य संसार में सभी देशों में एक ही समय उदय होता और अस्त होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है। दूसरा प्रमाण हम ये दे सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से सीधे एक ही दिशा में बराबर चलता जाए और अंत में उसी स्थान

पर पहुंच जाए जहां से वो रवाना हुआ था, ये तभी संभव है जब पृथ्वी गोल हो। कोलंबस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने इसी सिद्धांत पर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। प्रमाण के रूप में एक और बात हम कह सकते हैं कि यदि हम समुद्र तट पर खड़े होकर किसी आते हुए जहाज को देखें तो पहले हमको उसका ऊपरी भाग ही दिखाई देता है, परंतु ज्यों-ज्यों जहाज निकट आता है तो उसका नीचे का भाग भी दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार अगर कोई जहाज समुद्र तट से बाहर जाता है तो सबसे पहले उसके नीचे का भाग दृष्टि से ओझल होता है और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर का भाग भी दिखाई नहीं देता। इसका कारण पृथ्वी की गोलाई ही है। हमारी पृथ्वी अपने अक्षीय धुरी पर लगातार घूम रही है। इस अक्षीय धुरी के दो सिरों में एक ऊपरी हिस्से को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे निचले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीचों बीच बाएं से दाएं एक रेखा खींची हुई मानी जाती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री होता है। इस रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तरी भाग में स्थल की अधिकता है और दक्षिणी भाग में जल की अधिकता है? उसमें भी स्थलीय भाग केवल 28% यानी 28% है, जबकि जलीय भाग 72% है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं और ऋतुएं कैसे बदलती हैं। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं, जिसके लिए पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। इस गति के द्वारा ही दिन और रात होते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन और जो भाग पीछे पड़ता है वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी की एक और गति होती है जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और वो पूरा एक चक्कर 365.25 यानी 365 दिन का समय लेती है सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक वर्ष इस पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण ऋतुएं भी बदलती हैं। क्या आपको मालूम है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी की वार्षिक गति और उसके अक्ष पर झुकाव मिलकर ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है। साथ ही दिन और रात के परिमाण यानी दोनों के बीच के समय में भिन्नता लाते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष धरातल के साथ समकोण बनाता तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती, जिससे सभी जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। लेकिन पृथ्वी की कक्षा के झुकाव के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ओर झुक जाता है, दक्षिणी गोलार्ध उसके परे हो जाता है, कभी इसके विपरीत दशा होती है। अब हम जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। विषुवत रेखा के समानांतर यानी बाएं से दाएं 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतर से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 180 होती है। अब किसी अक्षांश रेखा वृत्त पर किसी स्थान विशेष की सही स्थिति जानना है तो हम दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई रेखाएं खींचते हैं, तो ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यदि 1 से 1 डिग्री के अंतर पर इन्हें खींचा जाए तो इनकी कुल संख्या 360 होगी। अक्षांशों की गणना तो विषुवत रेखा वृत्त अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर ली जाती है, लेकिन देशांतरों की गणना कहाँ से की जाए ये समस्या है। कारण ये है कि सभी देशांतर 1 से हैं, इसलिए सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाए। किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण तक एक ही साथ दोपहर होती है, मध्याह्न जिसको कहते हैं, इसीलिए देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस तरह कुल 360 देशांतर रेखाओं में से आधी यानी 180 ग्रीनविच से पूर्व तथा 180 ग्रीनविच से पश्चिम, जिन्हें क्रम से पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हमें इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो जहां 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 81 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, वही प्रयागराज की स्थिति मानी जाती है। अर्थात जहाँ एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा

0: एक दूसरे को काटती हैं, वहीं किसी भी स्थान की स्थिति मान ली जाती है। बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी को मोटे तौर पर दो ही भागों में बांटा जाता है, एक को महाद्वीप कहते हैं और दूसरा हो जाता है महासागर। महाद्वीपों के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां और बहुत सारे स्थल रूप होते हैं, वहीं महासागर में भी इसी तरह के भूस्वरूप पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिनका नाम है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। महासागरों की संख्या 5 है, जिसमें से प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, अंटार्कटिक तथा आर्कटिक महासागर, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा गहराई प्रशांत महासागर की है। इसका क्षेत्रफल 1655 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा गहराई लगभग 5000 मीटर है, जहां स्थल पर सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, वहीं महासागरों की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई 11589 मीटर गहरी है। अर्थात धरातल पर जितनी गहरे स्थल पाए जाते हैं या ऊंचे स्थल पाए जाते हैं, महासागरों में उससे भी ज्यादा गहराई देखी जा सकती है।
1: हाँ भैया, देखा है, जानकारी देतनी डॉक्टर सुनीता पाटर। हमारी पृथ्वी लड़का लोग सुनले हुई हैं और लड़का लोग इंतजार और औरत भी हुई हैं, एक और बाल गीत सुने, फिर अपन बैठ के आगे बढ़ी।

0: बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बालवाड़ी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब होंगे भोजपुरी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति असाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बरिस 2014 के बाद देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एगो मॉडल के रूप में दिखाई दिला। प्रधानमंत्री के अगुवाई में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के समस्या खत्म पहले हुए। श्री योगी आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई के प्रशिक्षण वर्ग के संबोधित करत रहें। वहां के कहा कि भाजपा

0: के सरकार में देश का सीमा का सुरक्षा मजबूत भइल हवे।
1: 2014 के पहले दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता करता था, चोरी छिपे हमारे सैनिकों पर अत्याचार कर लेता था। सरकारें बोलती थी कि बोलना नहीं है क्योंकि कहीं संबंध खराब न हो जाए, यानी देश की कीमत पर संबंध बनाने की चिंता थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भारतीय जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना और एकर प्रगति यात्रा का उल्लेख करत कहले कि पार्टी के कार्यकर्ता लोग ही दल से पहले देश और मनई से पहले समाज का भावना से कार्य करेला। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कई के करीब 200 लोगों की समस्या के सुनले। ये मौका पर वहाँ के अधिकारियों के निर्देश दिया कि जनता की समस्या का समाधान जुड़ते कल जाओ। मुख्यमंत्री लोगों के भरोसा दियावलें कि सरकार आवास का व्यवस्था कैले से लेके बीमारियन के इलाज में पुरहर सहायता देवे बदे संकल्पित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर और यमुना सिटी सेक्टर 10 में दुई गो खास निवेश परियोजना का नई धैले। जेवर में आयोजित भइल अंबर इंटरप्राइजेज आ एक्सेंट के सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के नई धैले के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहले कि करीब 6,785 करोड़ रुपया से बेसी के लागत वाला ई परियोजना प्रदेश के औद्योगिक विकास के नया गति देई। कार्यक्रम के केंद्रीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन आ पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवों संबोधित कैले। यमुना सिटी सेक्टर 10 में सेल सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नई धरत मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश में 6,00,000 से बेसी परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथे सोलर पैनल लगा के ऊर्जा बदे आत्मनिर्भर बनल हवे। सरकार का अगला लक्ष्य है अगला 2-3 बरिस में प्रदेश में 20,000 मेगावाट ले नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का बाटे। मुख्यमंत्री आज गौतम बुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौका पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथा संस्करण का कर्टन रेजर सेरेमनियों में शामिल भइले। ये मौका पर वहां के 2,479 करोड़ रुपया की लागत वाला 70 गो विकास परियोजना का लोकार्पण कैली आ नई धैली। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी और औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदियो मौजूद रहले। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहलावे कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अगला 2 बरिस में देश भर के 500 शहरन और कस्बा में फैलावल जाई। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करत श्री शाह ये पहल के सरकारी क्षेत्र में एगो क्रांतिकारी कदम बतौले।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7,00,000 सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या के वशिष्ठ कुंड वार्ड में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के लगे नवका बनल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कैले। ये मौका पर वहां के कहले कि आंगनबाड़ी केंद्र लैकन के पोषण शिक्षा और महिला लोगों के मजबूत बनौले का खास जरिया हो। उद्घाटन के बाद वहां के केंद्र का निरीक्षण कैलेन और लैकन से बतिया के उनकर उत्साह बढ़ौलन। राज्यपाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगिन आशा बहुवन और स्थानीय महिला लोगिन से बातचीत कैलेन। मौसम विभाग के हिसाब से बिहने रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो जिला में मानसून दस्तक दे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश की आंतरिक

0: और बाह्य सुरक्षा एक मॉडल के रूप में नजर आती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या समाप्त हुई है। श्री योगी आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में देश की सीमा सुरक्षा मजबूत हुई है।
1: 2014 के पहले दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता करता था, चोरी छिपे हमारे सैनिकों पर अत्याचार कर लेता था। सरकारें बोलती थी कि बोलना नहीं है क्योंकि कहीं संबंध खराब न हो जाए, यानी देश की कीमत पर संबंध बनाने की चिंता थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और इसकी प्रगति यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता दल से पहले देश और व्यक्ति से पहले समाज की भावना से कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन करके करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार आवास की व्यवस्था करने से लेकर बीमारियों के इलाज में भरपूर सहायता देने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर और यमुना सिटी सेक्टर 10 में दो महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जेवर में आयोजित अंबर एंटरप्राइजेज और एक्सेंट के सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 6,785 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ये परियोजना प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। कार्यक्रम को केंद्रीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। यमुना सिटी सेक्टर 10 में सेल सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 6 लाख से अधिक परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हुए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में प्रदेश में 20,000 मेगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का है। मुख्यमंत्री आज गौतम बुद्ध नगर में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 2,479 करोड़ रुपये की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अयोध्या के वशिष्ठ कुंड वार्ड स्थित ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के निकट नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। उद्घाटन के बाद उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया और बच्चों से संवाद करके उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और स्थानीय महिलाओं से भी बातचीत की। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
3: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
6: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
6: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
5: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
6: UPSRTC देवरिया,
5: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
6: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
5: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
6: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
6: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
5: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
7: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
8: अनजान ऐप से बचें।
9: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: पंचों जय जवान जय किसान। देखा भैया, नारा लागल अब अपन बैठकी शुरू भइल। भैया हो, जितना भी खेती किसानी बागवानी बा, एमे जल के आवश्यकता जरूर पड़ेला। पानी अगर ना रहे भैया तो कौनो भी फसल होके चाहे बाग बागवानी होके, उ भैया ओकरे बिना अधूरा रही। कितनो उन्नतशील बीज मिल जाए, कितनो बढ़िया आप रखवाली कैली खेत की, लेकिन जब जब सिंचाई के जरूरत पड़ेला तो उसमें जल की आवश्यकता।
11: अरे भैया, फसल के तो बतिये छोड़ दो, जल ही जीवन है। अगर जल ना ही बा तो जीवन ना ही बा।
10: अब पूरी दुनिया में ही चिंता के विषय बनल चल जाता भैया कि जल संरक्षण अब लोगन के करे पड़ी। कहे जौन जल के भूजल स्तर बा वो धीरे धीरे नीचे जाता।
11: मुख्य रूप से बात बा भैया वेद भाई, बरसात का मौसम आवे वाला बा।
10: बिल्कुल,
11: बरसात के जल के दुरुपयोग न होके, बेकार न जाए पावे, ओकर संरक्षण अपन किसान भाई लोग करें, ओके बचौले के उपाय करें, तो उसे बहुत कुछ लाभ उठावल जा सके।
10: बिल्कुल भैया, यही में एक योजना बहुत पहले से भी चल रहा बा, कई लोग करे लन भी, कि छत के जोन पानी बा वो वर्षा के जल के अलग अलग पाइपन के माध्यम से नीचे जोन टैंक बनल रहेला वाटर टैंक, वो में अगर पहुँच जाए तो सुरक्षित रही। और जब जब भैया जोन जो भंडारण टैंक भर अगर साफ सुथरा रहे तो बचे हुए पानी के जब भी जरूरत बा तब आदमी उपयोग कर सकेला। एकरे अलावा जोन अगर ऐसे भी ज़्यादा पानी छत के बा तो जोन आसपास सोखता के गड्ढा में होमे रहे, ताकि जोन जल के स्तर बा जमीनी वो बढ़ सकेला। और भैया यो बा कि नल के आगे जोन आप अपने भी घरेलू उपयोग करते हैं कि बेमतलब अनावश्यक पानी के बहाव या पानी के बर्बादी ना होके, हर आदमी भैया एकरे खातिर संकल्प लेवे।
11: पानी के महत्व के समझले के जरूरत बा, ओकर दुरुपयोग कैले के जरूरत नहीं है। ओकर जितना आवश्यकता है ओतो न उपयोग करे और पानी के संरक्षण करे।
10: बिल्कुल भैया। और भैया देखा, जैसे अपन बातचीत चलल बा तो यही बातचीत में आज अपने बीच में जीतन यादव जी हैं, जौन बहुउद्देशीय दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के गठन कैसे होके एक विषय में किसान भाई लोगन के विस्तार से बतैहन। किसान भाई पंच भाई भी सुने, हम लोग सुनल जा।
12: प्रारंभिक बहुउद्देशीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के गठन के लिए सबसे पहले जिस गांव सभा या राजस्व गांव में समिति का गठन होना होता है उस ग्राम पंचायत का

सर्वेक्षण किया जाता है। संबंधित गांव में भैंस व देसी प्रजात की गाय तथा संकर प्रजात की गाय की संख्या कितनी है। गांव में वर्तमान समय में दुग्ध का उपार्जन कितना हो रहा है। कितनी मात्रा में घर पर दुग्ध उत्पादक दुग्ध का सेवन कर रहे हैं और कितनी मात्रा में सरप्लस दुग्ध बाजार में विक्रय किया जाता है। ग्राम पंचायत में 100 लीटर दुग्ध अगर बाजार में बिक रहा है तो वहां पर ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक, खुली बैठक में उत्पादकों की एक मीटिंग की जाती है जिसमें कम से कम 40 पशुपालकों के पास दुधारू पशु होनी चाहिए। आम बैठक में यह निर्णय दिया जाता है कि संबंधित गांव में दुग्ध समिति का गठन किया जाए। उस बैठक में एक सभापति व मुख्य प्रवर्तक, जिसे हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहते हैं, उसका चयन किया जाता है। सभी दुग्ध उत्पादकों को डेयरी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। दुग्ध का क्रय जिस प्रकार किया जाता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। समिति स्तर पर सेंट्रीफ्यूगल मशीन व DPMCU डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट लगी होती है जिसके द्वारा दुग्ध के गुणवत्ता की जांच की जाती है। दुग्ध उत्पादक सदस्यों को समिति से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। दूध का उचित मिल मिलता है। दुग्ध मूल्य का साप्ताहिक भुगतान किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को निःशुल्क पशु आहार का वितरण किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को निःशुल्क मिनरल मिक्सर का वितरण किया जाता है और दुग्ध उत्पादक सदस्यों को कृषि विश्वविद्यालयों एवं बाह्य प्रदेश भ्रमण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ समिति गठन के लिए संगठन बैठक जो की जाती है उस बैठक में कम से कम 40 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध समिति का सदस्य बनाया जाता है। प्रत्येक सदस्य से 50 रुपया हिस्सा व 5 रुपया प्रवेश शुल्क, इस प्रकार कुल 55 रुपये प्रति सदस्य द्वारा मुख्य प्रवर्तक के पास जमा किया जाता है जिसकी प्राप्ति रसीद प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराई जाती है। बैठक में उपस्थित 40 सदस्यों में से 11 सदस्यों की प्रबंध कमेटी बनाई जाती है जिसमें 5 पद आरक्षित होते हैं। 1 पद अनुसूचित महिला के लिए, 1 पद अनुसूचित पुरुष के लिए, 1 पद ओबीसी महिला के लिए, 1 पद ओबीसी पुरुष के लिए, 1 पद सामान्य महिला के लिए व 6 पद अनारक्षित होते हैं। समिति का गठन करने के बाद समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जो कमेटी का सदस्य होता है। अध्यक्ष का चयन होने के उपरांत 40 सदस्यों में से सचिव का चयन किया जाता है जो कि प्रबंध कमेटी का सदस्य नहीं होता है। सचिव का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को सचिव बनाया जाए वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और संस्था के प्रति समर्पित होना चाहिए। सचिव या अध्यक्ष का चुनाव होने के उपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक में प्रारंभिक बहुद्देशीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का बचत खाता खोला जाता है। बचत खाता सदस्यों के द्वारा जमा हिस्सा पूंजी से ही खोला जाता है। खाता खुल जाने के बाद संबंधित जिले के दुग्ध संघ का सदस्य बनती है जिसके लिए 550 रुपये का शेयर खरीदना पड़ता है। इसके बाद प्रस्ताव वही में कुल 23 प्रस्ताव पारित कराए जाते हैं। प्रस्ताव पारित होने के उपरांत समिति को निबंधक के पास पत्रावली को भेज दिया जाता है। निबंधन प्रक्रिया जांचोपरांत पूर्ण की जाती है। निबंधन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद समिति को समस्त जांच उपकरण एवं स्टेशनरी दुग्ध संघ से उपलब्ध कराई जाती है। सामग्री के साथ दुग्ध रखने के लिए स्टील के केन उपलब्ध कराए जाते हैं। समस्त सामग्री उपलब्ध होने के बाद सचिव द्वारा दुग्ध संग्रह का कार्य शुरू किया जाता है। समिति के सदस्यों एवं अन्य सदस्यों द्वारा भी समिति को दुग्ध दिया जाता है। जो समिति के सदस्य दूध देते हैं उन्हें हम पोरल सदस्य कहते हैं।

और जो समिति के सदस्य नहीं होते हैं उनको अपोरल सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार पोरर और अपोरल सदस्य मिलकर के समिति में दूध देते हैं। समिति में दूध देने के बाद दूध का नाप तौल करने के बाद दूध के सिंपल लिया जाता है। सिंपल का टेस्ट सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिसे हम गर्वर मशीन भी कहते हैं।

मूल्य निकाल लेते हैं। डेयरी व्यवसाय में कई प्रकार के अभिलेख रखे जाते हैं, खरीद रजिस्टर, भुगतान रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, प्रस्ताव बही, रोकड़ बही, सदस्य व्यक्तिगत खाता, फैट जांच पुस्तिका। खरीद रजिस्टर में सदस्यवार, दुग्ध की मात्रा, CLR, फैट के साथ साथ कीमत का अंकन प्रतिदिन किया जाता है। साथ ही साथ अगर दोनों पाली में दुग्ध का संग्रह किया जाता है तो खरीद रजिस्टर में सुबह और शाम का दूध भी अंकित किया जाता है। दूध की खरीद सस्ती हो रही है या महंगी हो रही है इसकी भी हम जांच करते हैं, जिसके लिए हम संपूर्ण दूध का GT जनरल टेस्ट निकालते हैं। इसके बाद दुग्ध को सुरक्षित रखकर दुग्धवान पर रख करके दुग्ध संघ को भेज दिया जाता है। भुगतान रजिस्टर में दुग्ध मात्रा के साथ साथ प्रतिदिन एवं प्रति व्यक्ति का दुग्ध मूल्य का अंकन एक सप्ताह तक किया जाता है। एक सप्ताह के बाद उसका दुग्ध का मूल्य का अंकन भी दूसरे सप्ताह में किया जाता है। इस प्रकार पूरे महीने भर का जो है दूध कितनी, दुग्ध की मात्रा क्या है और उसका कीमत क्या है, इसका भी अंकन किया जाता है। दुग्ध संघ द्वारा समितियों के दूध मूल्य का भुगतान जो है 1 से 8 तारीख तक का भुगतान उसी माह की 12 तारीख को, 9 से 16 तारीख का भुगतान उसी माह की 20 तारीख को और 17 से 24 दिनांक तक का भुगतान उसी माह की 28 तारीख को तथा 25 से 30 या 31 तारीख तक का भुगतान अगले महीने की 4 या 5 तारीख को किया जाता है। सदस्य रजिस्टर, इस रजिस्टर में संपूर्ण सदस्यों का विवरण का अंकन किया जाता है जिससे सदस्य के संबंध में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। सदस्य रजिस्टर में सदस्य का बैंक का खाता नंबर भी उपलब्ध रहता है जिससे सदस्य के खाते में दुग्ध संघ मूल्य भेज देता है। उसी के साथ साथ ही किसानों को अन्य भी रिकॉर्डों के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी पड़ती है। प्रस्ताव बही, प्रस्ताव बही में समिति में होने वाली गतिविधियों का प्रस्ताव के माध्यम से जो शासन की योजनाएं होती हैं लोगों को बैठक करके उस योजना के बारे में बताया जाता है और योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रत्येक माह में एक बैठक अवश्य की जाती है। रोकड़ बही, इस बही में समिति के आय व्यय का विवरण अंकित किया जाता है। समिति के लाभ की स्थिति में उत्पादकों को बोनस का वितरण किया जाता है। सदस्य व्यक्तिगत खाता, उक्त पंजिका में सदस्यों द्वारा दिए गए दुग्ध मात्रा एवं कीमत का विवरण वित्तीय वर्षवार होता है जिसके आधार पर नंद बाबा पुरस्कार, गोकुल पुरस्कार व निर्वाचन सूची पूर्ण करके में सहायता मिलती है। दुग्ध समितियों में प्रत्येक माह में सभी सदस्यों की बैठक की जाती है जिसके द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाती है और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाता है। वर्तमान समय में शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं डेयरी के किसानों के हित के लिए चलाई गई हैं, जो कि हम किसान को उस योजना के द्वारा जो हमारे डेयरी के मेंबर होते हैं उनको हम उक्त योजनाओं से जोड़ते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंद बाबा गोकुल मिशन के अंतर्गत भी समितियां बनाई जाती हैं। साथ ही साथ हम बैठकों के माध्यम से अपने पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव के संबंध में, पशु के खान पान के संबंध में, पशु के आवास के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया जाता है। जिस पशु आवास के लिए जिस स्थान पर आवास बनाया जाए वो स्थान ऊंचे होना चाहिए और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। पशुधन को हमेशा ठंड से बचाव के लिए भी हमको ध्यान देना चाहिए। सर्दी के समय पशु का बिछावन 6 इंच मोटा होना चाहिए। साथ ही साथ सर्दी के समय पशु घर की खिड़कियों पर जो है रोशनदान पर बोरी और टाट के पर्दे लगाए जाते हैं जिससे पशुधन को भरपूर आराम मिले। दुग्ध समिति के गठन में पशुओं के खान पान के भी बारे में जानकारी दी जाती है। अधिक से अधिक दुग्ध उपार्जन करने के लिए हम अपने पशुओं को
चारा का संतुलित पशु आहार देते हैं।

0: 100 केजी आहार बनाने के लिए 40 किलोग्राम गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ या जई का दाना लेते हैं, 25 किलोग्राम चोकर लेते हैं, 32 किलोग्राम सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला की खली लेते हैं, 2 किलोग्राम खनिज लवण लेते हैं, 1 किलोग्राम नमक लेते हैं। इस प्रकार हम 100 किलो संतुलित पशुहार बना करके अपने पशु को अधिक दूध उत्पादन के लिए और पशु के शारीरिक विकास में हम इस संतुलित पशु आहार का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम अपने जो है स्वस्थ पशु हमारा जो रहता है वो अच्छा सा दूध देता है और हम अपने पशुओं के अच्छे दूध से ही जो है हम आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: हाँ, अब देखा पंच भाई वार्ता सुन लें और वार्ता के बाद चलिए और जानकारी ली। हल्दी व अदरक की खेती जानकारी देते हुए डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव इनसे बातचीत करते हुए भैया देवता प्रसाद पांडे।
5: आज अपने बीच डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव जी अपने बैठकी में आयल हैं। किसान भाई, आप लोगों के अदरक और हल्दी के खेती के बारे में एक कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी है। हम आपके परिचय करवा दें कि डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज गोरखपुर में वैज्ञानिक उद्यान हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके स्वागत है और एक साथ ही हम जानना चाहब कि अपने दैनिक जीवन में अदरक और हल्दी के का उपयोग है और उकर महत्ता का है, एकरे बारे में किसान भाई लोग उनके बताओ।
6: हल्दी हमारे देश की अति प्राचीन एवं धार्मिक रीति रिवाजों में प्रयोग की जाने वाली बहुपयोगी मसाला फसल है, जिसको भारतीय केसर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में जैसे स्वाद, महक तथा रंगों के रूप में किया जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण एशिया में भारत माना जाता है। हल्दी के साथ साथ हम अदरक की बात करते हैं तो अदरक एक मुख्य व्यावसायिक नकदी फसल है। अदरक को शुद्ध फसल के रूप में तथा छायादार स्थानों पर बागवानी वृक्षों के साथ उगाया जाता है। भारतवर्ष में अदरक घर घर में प्रयोग की जाने वाली आम मसाला फसल है। भारत में उगाई जाने वाली अदरक की गुणवत्ता विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसे हरे, ताजे एवं सूखे सोंठ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गर्म प्रवृत्ति का मसाला है जो कफ एवं गले की समस्या में लाभप्रद है। इसके साथ ही साथ हम हल्दी को भी बताना चाहेंगे। हल्दी में कैंसर प्रतिरोधी एवं वायरल प्रतिरोधी गुण होने के कारण इसका दवा व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है।
5: आपके कहने का मतलब भैल कि हल्दी और अदरक अपने धार्मिक जीवन से लेके अपने रोग व्याध के दूर करे खातिर तक जौन है एकर इस्तेमाल होला, एकर प्रयोग होला। ए लिए हम समझत हैं कि अपने दैनिक जीवन में एकर उपयोगिता काफ़ी है। हम एकरे बार आपसे जानल चाहब कि एकर खेती कैसने जलवायु में हो सकेले, का अपने पूर्वांचल में भी एकर खेती हो सकेले?

0: इसकी खेती के लिए अपने पूर्वांचल का जो मौसम है वो उपयुक्त है। अदरक की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट मृदा, जिसका की पीएच मान 6.5 से 7 के मध्य हो, भारी या चिकनी दोमट भूमि अदरक और हल्दी की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है।
1: अच्छा, यानी कि मटियार जमीन होके वो हमें एकर खेती नहीं हो सकेले, दोमट या बलुई दोमट खेती हो अगर जब माटी है तो हमें एकर जौन है खेती बड़े पैमाने पर हो सकेले। एहलिए हो सकेले कि कंद वाली फसल है, एहलिए एकरे ये जमीन जौन है फूफर हो। अच्छा, ये बताएं कि माटी तो आप बता देने कि भाई एकर बलुई दोमट हो या दोमट हो, तो फिर एकर तैयारी भी करे न बात आवत हो, तैयारी कैले में का सावधानी बरते पड़ी?
0: इसकी बुआई का जो समय है वो अप्रैल से जून के मध्य होता है। इसके प्रकंद को बोने से पहले 0.5% एगलाल या डाइथेन M45, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है, तो इस मृदा की तैयारी के लिए हम 2 से 3 गहरी जुताई करके उसमें कम से कम 10 से 15 टन गोबर सड़ी खाद मिला के 2 से 3 जब गहरी जुताई कर लेते हैं तो उसके बाद पाटा लगा के ये खेत हमारे बोने के लिए तैयार हो जाता है।
1: अब बात आवेले प्रजाति के और ओकरे बोले के समय, ये दो चीज़ है। तो अदरक के कौन अपने यहाँ उन्नतशील प्रजाति आटिन, ओकर बोले के समय का हुई, और हल्दी के उन्नत प्रजाति का बाटिन, ओकर बोले का समय हुई, एक बताओ जा।
0: हल्दी की जो प्रजाति हैं उसमें सुवर्णा, सुगना, सुदर्शन, IISR प्रभा, IISR प्रतिभा, रोमा, रश्मि, सुरोमा, राजेंद्र, सोनिया नामक प्रजाति जो हैं हल्दी के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा जो अदरक है, अदरक के लिए नाडिया, समस्तीपुर, बरुआ सागर व करक्कल नाम की जो प्रजाति है, इसके साथ साथ सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, वर्दा और रजता नामक प्रजातियां उपयुक्त हैं।
1: ये पूर्वांचल में ही हो सकेली सब प्रजाति
0: जी,
1: बोल जा सकेली?
0: हाँ, बोल।
1: एकर उचित समय का होई?
0: इन दोनों ही फसलों के बोने का जो उचित समय है वह अप्रैल से लेके जून के मध्य तक बो सकते हैं।
1: अगर केहू किसान भाई एक हेक्टेयर खेती कैल चाहत हो के अदरक या हल्दी के, तो फिर हमें बिया ओके कितना लगी और ओकर कुछ माप हुई ना कि कितना वजन के बिया जो है वो हमें लगावल जाए?
0: जी,
1: एक बतावल जाए।
0: जी, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि अदरक और हल्दी के लिए जो, जैसा कि आपने पूछा कि कंद का वजन, तो इसके लिए हम 20 से 25 ग्राम का जो है वो कंद का वजन उपयुक्त होता है, और उसमें कम से कम 2-3 आँखें होनी चाहिए, और बुआई से पूर्व इन कंदों को बोरों में लपेट कर 16 से 24 घंटे तक रखने से अंकुरण शीघ्र होता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे हल्दी की बात करें तो इसके लिए कम से कम 15 से 20 कुंतल राइजोम या उसके बीज की आवश्यकता होती है, और इसी तरह अदरक की बात करें तो इसके लिए लगभग 16 से 18 कुंतल बीज चाहिए।
1: एकर उपचारण भी करे पड़े?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। बीज का जो है वो उपचार बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो खेत जनित, मिट्टी जनित बीमारियां हैं और बीज जनित बीमारियां हैं उनका हम बचाव समय से कर लेते हैं, समय पूर्व कर लेते हैं। इसके लिए हम एगलाल नाम की दवा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसका 0.5% यानी कि 5 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार कर लेते हैं, या हम एक डाइथेन M45 नामक दवा आती है उसका 0.2% लेके, मतलब कि 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के तैयार करते हैं, इसको डुबो देते हैं, डुबोने के बाद छायादार स्थान में रख के सुखा लेते हैं, इसके बाद हम इसकी बुआई करते हैं।
1: अब बात आवेले कंद से कंद के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी,
0: जी
1: कितना अपन किसान भाई लोग रखे?
0: बिल्कुल, अदरक और हल्दी की बुआई का 2 तरीका है, या तो इसको समतल खेत में बोते हैं अथवा इसको मेड़ पे बोते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अगर समतल भूमि में पंक्ति से बो रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर व कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि यदि हम मेड़ों पे इसकी बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व कंद से कंद की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: ये जो उपचार के आप विधि बतौली हैं, दवा बतौली हैं।

0: का हल्दी और अदरक दोनों के लिए एक चीज काम करी?
1: जी बिल्कुल, ये दोनों के लिए एगलाल और डाइथेन M45 दोनों ही, अदरक और हल्दी दोनों ही फसल के लिए उपयुक्त हैं।
0: खाद और उर्वरक के बारे में थोड़े बताओ जी।
1: अदरक और हल्दी जैसे कि हम बो देते हैं, इसमें बोने के बाद ही जो है हम एक बिछावन का प्रयोग करते हैं सूखी पत्तियों का।
0: अच्छा
1: जी जी, इसके बिछावन का हम प्रयोग करते हैं जो कि बड़ा लाभप्रद है। प्रथम बिछावन जो है हम हरी पत्तियां या घास फूस की पत्ती की एक परत बिछाकर बुआई के तुरंत बाद कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: तथा दूसरी जो है बिछावन गोबर की खाद की पतली परत बुआई के लगभग 35 से 40 दिन के पश्चात करते हैं।
0: ये बिछावन जौन हुई, वो बिछावन का मतलब यह लिए कि जौन है ओकर अंकुरण अच्छे ढंग से हो,
1: जी
0: ये ना
1: जी।
0: अच्छा, एक मतलब जौन बिया गाड़ल जाए, कंद गाड़ल जाए, ओकर गहराई भी कुछ होई ना, ये लिए क्योंकि बहुत या तो उथली हो या तो गहरी हो, कितना ओकर रखल जा गहराई?
1: गहराई जो है लगभग 5 सेंटीमीटर रखते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो है बहुत गहरा नहीं बोते हैं। और ये जो हम बिछावन की बात कर रहे हैं, बिछावन से आपके दो तरह के फायदे हैं।
0: हाँ।
1: एक तो इसमें जो हमारे खेत की नमी है
0: वो
1: नमी भी बनी रहती
0: है, सूर्य की रोशनी भी नहीं लगी।
1: जी, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि ये जब पत्तियां सड़ेंगी तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म खाद भी,
0: जैविक खाद
1: भी मिलेगी जो कि पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ जब ये पत्तियां और गोबर की खाद पड़े रहेगी तो हमारे खरपतवार जो है, जो आवश्यक पौधे हैं, वो अपने आप नहीं जम पाएंगे।
0: अच्छा, एकरे अलावा भी कुछ रासायनिक उर्वरक इनके देवे पड़ी?
1: जी, रासायनिक उर्वरक भी देते हैं जो कि 120 60-60 की दर से देते हैं।
0: अच्छा, एकरे बाद नंबर आवेले सिंचाई के, क्योंकि गर्मी का मौसम होला, सिंचाई कैसे और कब करें और कितना सिंचाई हमें करे पड़ी उनके?
1: शुरुआत में तो हम इसकी सिंचाई जो है लगाने के बाद इसको जो है 4 से 5 सिंचाई गर्मी के मौसम में देते हैं, और वर्षा ऋतु आने के बाद हमें इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है।
0: कुछ कीट और व्याध भी ऐसा बात है जौन की फसल के प्रभावित करते हुए हैं, तो कौन कीट और कौन व्याध है जौन की अदरक और हल्दी के फसल के प्रभावित करेले और ओकर निदान का हो सकला?
1: इसमें जो है मुख्य रूप से जो है एक छेदक कीट है वो लगता है, जिसके लिए प्रोफेनोफास नामक दवा जो है हम स्प्रे करते हैं।
0: तो पत्ती में लगा ला कि कंद में लगा?
1: कंद में लगता है।
2: हाँ भैया, देखा अपने खेती बाड़ी के साथ साथ जौन औषधीय भैया पौधे हो लें या जौन औषधीय फल हो लें, हल्दी व अदरक के खेती जानकारी देतलन डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, इनसे बातचीत करतलन भैया देवता प्रसाद पांडे। ये बातचीत के कारण इनके धन्यवाद भी दिया जा, और किसान भाई और पंच भाई लोगन से ये कहेगा कि भैया गर्मी अपने पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर भारत में बहुत पड़ता, गर्मी से अपन बचाव स्वयं रखें, कहीं भी बाहर निकलें गमछा ले कर निकलें, पानी ले कर निकलें, अगर बहुत जरूरी नहीं बा तो जो दोपहर के समय बा वो अपन आसपास के जो जरूरी काम हो कह लें, लेकिन भैया अपन स्वास्थ्य के देखरेख पहले बा।
3: साथ वेद भाई देखो घड़ी भी इशारा करत या कि अब किसान भाई लोगों से विदा ले लेक समय भी हो चलल बा, तो किसान भाई से लिहल जा विदा
2: चलल जा। पंचों जय जवान जय किसान।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना, जिसपे पहला नाम है कुमारी भारद्वाज। कुमारी पूजा भारद्वाज, पिता का नाम बंटी भारद्वाज। पूजा की उम्र 15 वर्ष है, कद 5 फुट, रंग गोरा। ये हुमायूंपुर उत्तरी निकट भरटोलियां गली थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर की रहने वाली हैं। पूजा 12 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 7007047।

दो पाँच नौ। इसी क्रम में अगला नाम है साधना। पिता का नाम श्री मुन्नीलाल। साधना ग्राम मुहद्दीनपुर थाना पनियरा जिला महाराजगंज की रहने वाली हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 20 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल, नाक कान कद औसत, लंबाई लगभग 5 फीट। ये 1 मई 2026 को दोपहर 1 बजे से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर नोट करें 9 3 3 5 7 2 6 4 4 3। अगला नाम है अन्नु। पिता का नाम जगन्नाथ। अन्नु अनध्या पोस्ट हरपुर तिवारी थाना श्याम देवरवा महाराजगंज की रहने वाली हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा, उम्र 19 वर्ष। ये 2 मई 2025 सुबह 9 बजे से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 9 9 8 4 0 3 6 3 4 8। कुमारी प्रियंका। पिता का नाम भीम पासवान। प्रियंका की उम्र 20 वर्ष है। कद 5 फीट। ये 26 मई 2026 दिन मंगलवार से लापता हैं। प्रियंका ग्राम नैना पोस्ट कुसौरी जिला बलिया की रहने वाली हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 9 8 3 5 1 8 5 4 0 9। प्रद्युम्न गुप्ता उर्फ अभिषेक। पिता का नाम अनिल गुप्ता। प्रद्युम्न की उम्र 18 वर्ष है। ये 2 मई 2026 को लगभग 11 बजे दिन से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ। ये ग्राम पोस्ट ताड़ीबड़ा गांव अभी की थाना नगरा जनपद बलिया के रहने वाले हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 9 8 7 7 1 1 4 5 0 9। अगला नाम है प्रियंका यादव। पति का नाम श्री अमर यादव। प्रियंका ग्राम रेवती पोस्ट रेवती थाना रेवती जनपद बलिया की रहने वाली हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। हाइट 5 फीट लगभग, रंग गोरा। ये 2 मई 2026 से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 7 6 6 3 9 4 0 0 8 0। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

0: कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
3: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
2: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
3: UPSRTC देवरिया,
2: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
2: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
3: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
2: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
4: लोक गीतों के कार्यक्रम में लोकधारा में सुनिए मैनावती देवी को।
5: यह भी एक ऐसा गीत सुना रही हूँ, जब दूल्हा शादी करने के लिए आता था माड़ों में, तो ससुराल पक्ष जो है अपने तरफ से अपना वस्त्र पहना करके दूल्हा को तब शादी का रस्म शुरू कराते थे। उस समय धोती पहनने का रिवाज थी और धोती लगभग आज भी शादी के समय में चलता है। तो धोती पहरा करके शादी करने के लिए जब कन्या पक्ष के लोग धोती पहनने के लिए देते थे, नाऊ पहराता था, लेकिन सखियां सब गाली गाती थी दूल्हा को, उनके बाप को, उनकी माँ को, कि दूल्हा के बाप जो हैं धुनिया हैं और उनके बाप जो हैं जुल्हा हैं, उनके बाप नाऊ हैं, वो नाऊ उनका बाप है,

0: बस
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए

0: allindiaradio.gov.in.
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com.

0: मैनावती देवी के गाए इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश हमार। इसमें आइए सुनते हैं राम कृपाल यादव से वार्ता।
1: भाव से बोलो भैया, दया के सीढ़ी चढ़, भाव विचार के मन में रख के आपस में जनी लड़। अपने देश पर गर्व बा तोहके, ए बात के गुण कैसे उत्थान होई देश क पतन क बात ना सुन। दिनो दिन बा बढ़त आबादी, ए पर रोक लगाव, गांव नगर ना समझत बाटे ओके जा बतलाव। कवन उपाय कवन बा विधि, जो आसान और होखे सीधी, गांव बासी समझे अपनावे, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगावे। यही रफ्तार में बढ़ी आबादी, विकसित राष्ट्र हुई बर्बादी। दोनों जून के मिली न खाना, मार झगड़ा नित्य रोजे हुई हैं, रोक न पई हैं थाना। कौनो

बालिका पढ़ी ना पई हैं होई निरक्षर देश, सुख संपत्ति ना सपनों मिली हैं छवले रही कलेश। नाना दर के ठोकर खैब साथ दिहे ना कोई, बनल बात बिगड़ जब जाई ना कोई तोहरो होई। ऐसन कर समझ के काज भारत देश के बचे लाज। हमारी दूसरी कविता है कहाँ गइल पुरन का गांव। कहाँ गइलो गुली डंडा कहाँ पुरन की खेल, कहाँ बने ओ घुरहू दादा राखे सबसे मेल। भोरही दादा कोल्हू नाधे ऊख पेरे भिनसारे, चूल्हा पर गुरु महिया खाने दौड़े लड़िका सारे। सुबह शाम भीड़ लागे कुआना औरत भरे पानी के, लकड़ी तोड़ बटोहिया लावे देवे अपनी नानी के। समय से नानी खाना बनैह पकड़ब गाड़ी रेल, आ कहाँ गइलो गुली डंडा कहाँ पुरन की खेल। कहाँ बने वो घुरहू दादा राखे सबसे मेल, कहाँ बाटे वो बारी पुरन की होखे ओल्हा पाती। चिकही उड़ा कबड्डी होखे जूटे मित्र संघाती, चना उखाड़ के होरहा लागे जब का हाबुस भुजाए। लहसुन मिर्चा नमक चटनी लेके सब लोग खाए, कैसन रहल जमाना पहले सबसे रहे मेल। आ कहाँ बटे वो गुली डंडा कहाँ पुरन की खेल, कहाँ बड़े वो घुरहू दादा राखें सबसे मेल। अब तो गांव चिन्हाते नइखे भइल बदल के सहरी, कहाँ लोग पकडंडी चले अब तो पीच मिले हर डहरी। दिया लैंप लालटेन जलत रहे घर घर लौकत ढिबरी, अब तो खम्हा गड़ल गाँवन में घर घर जलत बिजली। कच्चा मकान ना दिखत आँख से गइल व्यवस्था बदली, हाथी घोड़ा चढ़े ऊँट पर लोगवा पैदल जाए। टैक्सी टेम्पू रहे कहाँ तब बहुते कम देखाए, रहल देश मोर पहले कहवा अब कैलस सब देश से मेल। आ कहाँ बटे वो गुल्ली डंडा कहाँ पुरन की खेल, कहाँ बड़े वो घुरहू दादा राखे हम सबसे मेल। पेड़ से लाभ पर्यावरण रक्षा, पेड़ावा लगाव हमरे काट जानी भैया हो, पर्यावरण बचाव प्रदूषण के भगाव हो। पेड़ावा के खेत के मेड़वा पर लगाव हो, फालतू जगह ही आके पेड़ से सजाव हो। पेड़ावा से मिलला भैया पर्यावरण भरपूर हो, प्रदूषण के राख देशावा से दूर हो। एक पेड़ लगाव दस पुत्र के समान हो, कीर्ति जस फैले देश बनेला महान हो। पेड़ावा से मिलला भैया फल फूल दवैया हो, पेड़ावा की टहनी से करे लोग रसोइया हो। कवि राम कृपाल रक्षा पर्यावरण कर हो, प्रदूषण मुक्त जीवन यापन बनाव हो। हमारी चौथी कविता है जाड़ा के महीना में पत्नी द्वारा पति को उल्हना देना। आइल जाड़ा का महीना सैया तोहके ना बुझाता, हमहू बीमार सोनुआ पढ़े न कहाँ जाता। जोधना के जंघिया नइखे मंगरी के साल हो, हमरी तन के लुगा नइखे घर के लोग बेहाल हो। गइल कमाए पिया असरा धराई के, छोट बड़ सबके रखिह तू समझाई के। केतना ले सही दुख अब ना सहाता, आइल जाड़ा क महीना सैया तोहके ना बुझाता। भोरही में भोजन कैसे सैया हम बनाई, अम्मा जी के दीहल गारी कैसे बताई। गौआ पड़ोसियन से पूछ ली है आई के, भोरही नहाई कैसे कहाँ हम जाई के। लाजो उनका लागत नहीं खे कर ताड़ी झगड़ा, चुपे चली जात तबो करत बाड़ी रगड़ा। निखी दिन का गारी उनका हमसे ना सहाता, आइल जाड़ा का महीना सैया तोहके ना बुझाता। साल औरी चादर तोसक फाटल बा रजाई, छोटा काके स्वीटर नहीं खे कैसे मगाई। छोड़ी के बाहर सैया घरे चली आव, कुटीर उद्योग धंधा घरे।

0: कर के उद्योग लोग आगे बढ़ल जाता, आइल जाड़ा क महीना सैया तुहके ना बुझाता।
1: देश अमार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ राम कृपाल यादव से। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। इसमें आइए सुनते हैं इस्तबक मालवी निमाड़ी।

श्रोताओं, प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मालवी निमाड़ी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज का संगीतकार, जिसमें आज के संगीतकार होंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रात्रि के 8 बजे हम आपको सुनाएंगे हिंदी कार्यक्रम, जिसका विषय होगा हम और हमारा पर्यावरण। वार्ताकार होंगी प्रोफेसर गोविंद पांडे। रात्रि के 8:15 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम,

रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास

0: है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत

0: अयोध्या क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरूद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केन्द्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज का संगीतकार, जिसमें आज के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल सुर में। फिल्म का नाम था पारस मणि। कार्यक्रम का अगला गीत इस अंतराल के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूर

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, आज का संगीतकार कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत के युग पुरुष संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रस्तुति हो रही है, उनके बनाए संगीतों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। 1964 में दोस्ती एक छोटी बजट की फिल्म थी, ना बड़ा हीरो ना हीरोइन, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत ऐसा चला कि फिल्म सुपरहिट हो गई। चाहूँगा मैं तुझे के लिए पहला फिल्म फेयर मिला। उस रात के बाद प्रोड्यूसर लाइन लगा के खड़े रहते थे।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल केवल संगीतकार नहीं थे, वे भारतीय समाज के उत्सव विरह प्रेम भक्ति सभी भावनाओं के संगीतमय सूत्रधार थे। और इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल केवल संगीतकार नहीं, भावनाओं के सूत्रधार थे। आज भी जब बाबुल की दुआएं बजती हैं या मेरे महबूब गूंजता है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे बीच जीवित उठते हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से इस अमर युगल को नमन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम, आज का संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जुड़ा हम आपको सुनवा रहे थे, जो अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है हम और हमारा पर्यावरण। वार्ताकार हैं प्रोफेसर गोविंद पांडे।
1: हम और हमारा पर्यावरण, ये ऐसा विषय है जिस पर हमें निरंतर न केवल विचार करना चाहिए, बल्कि इसके बारे में गहन चिंतन भी करना चाहिए। वस्तुतः एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य इससे संबंधित है, जो मैं सबकी जानकारी के लिए कहता हूँ कि हम पर्यावरण से हैं और पर्यावरण हमसे है। तो हम भी पर्यावरण के एक भाग हैं। वस्तुतः जब हम पर्यावरण की परिकल्पना करते हैं, तो उसका आशय जो हमारा भूमंडल है, संपूर्ण भूमंडल से है, जिसमें वायुमंडल है, जिसमें जलमंडल है, जिसमें पृथ्वी मंडल है, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के रूप में कहते हैं, और इन तीनों भागों को मिला करके एक भाग और होता है जो लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी और एटमॉस्फेयर में भी, जहाँ जीव होते हैं, उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और ये पूरा जो भूमंडल है, वो हम सबके लिए निवास का और हम सबके जीवन का आधार तो है ही। हम सबकी ये जिम्मेदारी भी है कि हम इस पर्यावरण को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि इसको उसका संरक्षण भी करें। हमें इस बात की ओर ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए। जब आप वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायु प्रदूषण इसमें

एक प्रमुख समस्या है। आजकल जो मानव जनित कार्य हैं, जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण है, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है, या फिर जो है वो आजकल बड़ी एक समस्या पराली जलाने से एक प्रदूषण की समस्या है, और अनेक प्रकार के अन्य जो घरेलू कार्य हैं वहाँ पर भी कभी हम लोग इस प्रकार से ईंधन को जलाते हैं, तो वायु प्रदूषण की स्थिति में तेजी से जो है वो वृद्धि हुई है, और विगत वर्षों में इसके जो कारक तत्व हैं, चाहे कि वो पर्टिकुलेट मैटर या जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, PM 10 कहते हैं, उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इनमें भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि विश्व में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। तो हमें अपने वायु को शुद्ध रखना है, और वायु को शुद्ध रखने के लिए दो तीन चीज़ें मोटी मोटे तौर पर करनी होंगी। एक तो हम ऐसे क्रियाकलापों से बचें जिनमें हम लोग ईंधन को जला रहे हैं, या किसी प्रकार के प्लास्टिक को जला रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे पराली लोग जलाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण पैदा होता है। तो इन कार्यों पर हमें अपने रोक लगाना होगा, और साथ में जो जहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण पैदा होता है, तो वहाँ पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने होंगे। उसी प्रकार से वाहनों में जो वायु प्रदूषण के उपकरण हैं वो आजकल स्थापित होके आ रहे हैं, कैटलिटिक कन्वर्टर लग के आ रहे हैं, तो कैटलिटिक कन्वर्टर युक्त वाहनों का प्रयोग करें और उनकी समय समय पर उचित मेंटेनेंस करें, ताकि जो उनसे निकलने वाला धुआं है उसका प्रदूषण नियंत्रित स्तर का हो, जो हमारे वायु प्रदूषण में वृद्धि न कर पाए। और कुछ जो पराली जलाने वाली जैसी चीज़ें हैं उनका परिहार करना चाहिए, और घरों में जहाँ तक हो सके कोयला या उस प्रकार की चीज़ों को अब न जलाएं, शुद्ध जो ईंधन है उसका प्रयोग करें, जिसमें कि हमारा LPG है। LPG अब सरकारी प्रयासों से लगभग सभी को उपलब्ध है, और उसका प्रयोग करें। आजकल वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो यदि संभव हो तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने जो हमारे परंपरागत वाहन हैं उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, और इलेक्ट्रिक वाहनों से चलने की आदत डालें। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि हमें जहाँ तक हो सके अपने वनाच्छादन, वृक्षाच्छादन और हरिताच्छादन में वृद्धि करें, क्योंकि ये प्राकृतिक माध्यम है जो हर एक प्रकार के प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वृक्ष फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसे हम प्राणवायु के रूप में जानते हैं। जो प्राकृतिक का जो माध्यम है वो किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त होने का वो पेड़ पौधे ही हैं, तो उस पर हमें एक विशेष फोकस रखना होगा। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो जल का है। तो जल भी जो है वो जल के साथ क्या है कि जल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता का संरक्षण। आज दुनिया में कहने के लिए 2/3 भाग जल है और 1/3 भूभाग है, लेकिन अगर आप वास्तव में देखेंगे तो जितना भी जल उपलब्ध है उसका 97.5% भाग खारा है, समुद्र में है, जो हमारे पीने के लिए उपयोग में नहीं आ सकता। जो 2.5% जो फ्रेश वाटर है उसमें भी उसका भी जो अधिकांश भाग है वह या तो ग्लेशियर में या आइस कैप में, आइसबर्ग में, अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में, या पर्वतों की चोटियों पर बर्फ के रूप में विद्यमान है, और जिसके कारण वो सीधा प्रयोग में नहीं आ सकता। तो अगर हम देखें तो कुल जितना भी जल हमारे पास है उसका 0.6% भाग ही जो है वो हमारे पास उपलब्ध है उपयोग के लिए। तो जल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। यद्यपि भारतवर्ष में जल वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, और वर्षा औसतन 1160 मिलीमीटर प्रतिवर्ष होती है, जो विश्व के किसी भी समान क्षेत्रफल के देश के तुलना में

अधिक है, तो प्रकृति ने हमारे साथ जल के मामले में पूरा न्याय किया है। हर एक साल यहाँ लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बरसात से आता है, जिसका 3/4 भाग 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर बरसात में आता है जून से सितंबर के बीच में। परंतु अगर देखा जाए तो इसका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसमें से बहुत कम है, लगभग 10% से थोड़ा सा भाग जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। जबकि देश के बहुत सारे जिलों में जो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट रेट है, भूजल विकास की दर है, वो 50% से अधिक है, कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं इससे भी ज़्यादा है। और जिलों को मतलब क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड की श्रेणी में चिन्हित भी किया गया है। और बहुत सारे स्थानों पर तो ऐसा है कि भूजल का बहुत तेज़ी से दोहन हुआ है। तो हमें ऐसे स्थानों पर और जहाँ तक हो सके लगभग सभी स्थानों पर भूजल के अंधाधुंध दोहन पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि भूजल के तेजी से दोहन से जहाँ एक ओर भूजल की उपलब्धता घटती है, वहीं गुणवत्ता संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। आज देश के कई भागों में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी गुणवत्ता की समस्याएं भूजल के लिए एक चुनौती बन के खड़ी हैं और पेयजल के लिए एक बड़ी समस्या का सामना देश का आम नागरिक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें भूजल की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देना है, और इसमें भी जहाँ तक हो सके प्राकृतिक रूप से भी वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज के साधन उपलब्ध हैं, जहाँ तक हो सके उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और सतही जल को भी, सतही जल में जो हमारे नदियाँ हैं या तालाब हैं या झीलें हैं, उनके भी जल को संरक्षित करना चाहिए। उनमें हमें अपने नगरीय अपजल या औद्योगिक अपजल को नहीं गिराना चाहिए, और यदि कहीं गिराने की स्थिति हो तो उचित शोधन करने के पश्चात ही उन्हें उसमें गिराना चाहिए और उनके गुणवत्ता का संरक्षण करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता आने वाले समय में बेहतर हो, खराब ना हो। इसी के क्रम में एक और नाम आता है जिसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, जो पर्यावरण को से सीधा संबंध रखता है। आज देखा गया है कि चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह ध्वनि की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और हम लोग कोई चीज़ ऐसा लगता है कि कोई भी साधन है, चाहे वो हम रेडियो का प्रयोग करें या किसी डीजे का प्रयोग करें या किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करें, तो उसको इतने उच्च वॉल्यूम में सुनते हैं, ऐसा लगता है कि खुद के लिए नहीं सुन रहे बल्कि दूसरों को सुनाने के लिए सुन रहे हैं, और इस कारण कई बार वो हमारे समाज के लिए बहुत कठिनाई का कारण बनता है। और ऐसी स्थिति में हमें ये भी देखना है कि जो ध्वनि है वो खास करके जैसे जो शैक्षणिक संस्थान हैं या जो हमारे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, या फिर जो है वो पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजा हैं, जहाँ पर शांति की अपेक्षा होती है, उन्हें शांत क्षेत्र में रखा गया है ध्वनि प्रदूषण के नियामक मानदंडों में, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम लोग ध्वनि का नियंत्रण हर जगह ठीक ढंग से करें। और कहीं ऐसी स्थिति अगर हो जहाँ ध्वनि का स्तर मानक से अधिक हो पाया जाए, तो वहाँ पर ध्वनि नियंत्रण के, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के कारगर उपाय हमें अपनाने चाहिए और ध्वनि के स्रोतों को या तो बंद करना चाहिए या वहाँ पर ध्वनि नियंत्रण के लिए उपाय वहाँ पर अपनाने चाहिए। इसी क्रम में एक और जो बात है वो हम लोग कई बार अपनी मृदा या मिट्टी को भी जो है वो प्रदूषित कर रहे हैं। नाना प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग खेती में हो रहा है और उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए कई बार जितनी क्षमता आवश्यक होती है कीटनाशक की, उससे अधिक मात्रा में कीटनाशकों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें जिसके कारण वो कीटनाशक कई बार तो जो हमारे कृत्रिम जो उर्वरक हैं वो भी वो अधिक मात्रा में भूमि में होते हैं और इस कारण वो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का कारण बनते हैं, और हमारे जो सतही जल स्रोत हैं उनमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन या फास्फोरस या कीटनाशक जाते हैं, विषैले पदार्थ जाते हैं, जो न केवल जलीय जीव जंतुओं के लिए संकट का कारण बनते हैं बल्कि उस जल को कृषि के योग्य अथवा पीने के योग्य प्रयोग करने में भी बाधा पहुंचाते हैं। और कई बार वही जल, वही प्रदूषण भूजल के माध्यम से रिचार्ज होकर के हम जब नीचे जाता है एक्वीफर में, तो भूजल को भी प्रदूषित करता है।
तो हमें अपने जो

0: कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से कीटनाशकों के प्रयोग को बंद करना चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उन पर निर्भरता हमें बढ़ानी चाहिए, और ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो जैविक नियंत्रण है कीट खरपतवार के नियंत्रण के लिए या कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए उनके जैविक उपायों पर विशेष ध्यान दें, और कृत्रिम रसायन युक्त जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कम से कम करें और केवल उतनी ही मात्रा में करें जितना कि आवश्यक हो। और साथ में हम लोग यह भी ध्यान दें कि हम लोग क्योंकि वही जो कृषि उत्पाद है फिर हम बाद में उसको प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो अनाज हो या सब्जियां हो या फल हो, तो उनको भी हमें ये देखना है कि उनमें इतना कीटनाशक ना आ जाए हमारे प्रयोग करने के लिए कि हम उन्हें बचा तो लें लेकिन जब खाने के बाद जाएं तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आजकल ये एक बड़ी समस्या है और मैं इसके लिए एक बहुत छोटा सुझाव जनसाधारण के लिए देना चाहूँगा कि जब कभी आप बाज़ार से सब्जियाँ ले आएँ या फल ले आएँ तो कम से कम उसको आधा घंटा पानी में भिगा के रख दें। ज़्यादातर हमारे कीटनाशक जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और यदि आप ऐसा करेंगे चाहे वो फल खाने के पहले आधा घंटा न्यूनतम है, आधे घंटे से अधिक अगर उसको सोक करेंगे तो और बेहतर है, तो उसका आधे से अधिक जो उसमें जो कीटनाशक का अंश है वो निकल जाएगा और आपके लिए काफ़ी स्वास्थ्यकर स्थितियाँ उससे सृजित होंगी और वो खाने के लिए अनुकूल होगा। जो नुकसान आपको सीधे खाने से होता वो बहुत हद तक आप उससे अपना बचाव कर सकेंगे। और आखिर में एक बात मैं ये कहूँगा कि हम लोग इस नारे को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, हम पर्यावरण से हैं और पर्यावरण हमसे है, इसलिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक दिन में और अपनी प्रत्येक गतिविधि में यह ध्यान रखना है कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि पर्यावरण प्रभावित हो, और यदि कहीं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने आने वाले कार्यों के माध्यम से उस दुष्प्रभाव को सीमित कर सकें और उस दुष्प्रभाव को यथासंभव समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। यदि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे और पर्यावरण के प्रति अपने एक सजग नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था हम और हमारा पर्यावरण। वार्ताकार थे प्रोफेसर गोविंद पांडे। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
2: कीमती है
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माला।
5: टॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
6: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
9: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
10: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
9: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
10: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
9: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
10: UPSRTC देवरिया,
9: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
10: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर।
9: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
4: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
3: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
4: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
6: Mm-hmm.

0: गुलाम अली के गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन

0: 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया।

0: कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणा

0: हिमाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat programme on Akashvani tomorrow. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco Dimar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम

0: ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत।

0: निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे सांस सांस इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले

0: अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हमसे पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देता। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान

0: दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में केनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल

0: भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है अभी। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
1: जी,
2: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारे।

समारोह की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स
1: तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात

0: उपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झप ताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झप ताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on तबला by मुस्तफा हुसैन।

0: 10. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा।